0: and fun pizza kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to gain.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
0: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
2: Beta, 95% aaye?
3: Haan, mummy.
2: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
1: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
5: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
8: Hello everyone, how are you all doing today? It is Wednesday evening and it is 7:05 on the clock. This is your bestie, Ippy the Hippie on 104.9 Fun Asia Radio. And yes, it is that time, which is that time for an evening in Dallas. Bhai, evening se dheere dheere raat bhi ho jati hai. Main aapke saath hone wali hu 10 baje tak, like always. And we're gonna have some chats and some giveaway. Lots of amazing music. That's the bottom line. Music is priority, guys. Because I know all of you guys are driving back from work or like maybe going out to dinner, going out to dates, etc. So we will talk about all of those things just to keep you entertained.

कुछ लोगों का लकी स्टोन सैफायर होता है भाई, अगर आपकी राशि वैसे में पड़ी है तो आपका भी सैफायर शायद लकी स्टोन हो सकता है, लेकिन हम उस सैफायर की तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो किसी और सैफायर की बात कर रहा है।

भाई जिंदगी का माजरा क्या है ये तो हम सभी को पता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मर्करी रेट्रोग्रेड कल खत्म होने वाला है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई टोटली बिलीव इन दैट वू वू स्टफ। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने अपने आप का तो ट्रैक किया हुआ है, आपने किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट एवरी टाइम मर्करी इज इन रेट्रोग्रेड समथिंग रियली गोज रॉन्ग इन माई लाइफ। या तो मेरी गाड़ी खराब हो जाती, और ये मैं ना पिछले 4 साल से नोटिस कर रही हूँ, या तो गाड़ी खराब हो जाती थी, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती, या सम नॉनसेंस, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विथ हूएवर। और इस बार तो दोनों ही हो रहा है। इस बार पिछले हफ्ते मेरा हाथ चल गया, लाइक आई वॉज कुकिंग एंड देन आई एक्सीडेंटली बर्न माई हैंड, एंड देन उसके बाद मेरी बॉस के साथ मेरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो गई फ्रॉम माई अदर जॉब। सो आई टोटली बिलीव इन इट एंड आई एम सो ग्लैड 23rd को वो खत्म होने वाला है, विच इज कल। थैंक गॉड, देन वी कैन टेक अ ब्रीदर एंड ऑल द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज गोना गो अवे। हाउएवर, विच रिमाइंड्स मी, एक्चुअली इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज टेलिंग मी कि नॉर्थ टेक्सस में अपेरेंटली पावर सिचुएशंस बड़ी चल रही है, बट कुछ पावर का कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। सम प्लेसेस इन रिचर्डसन हैव सीन पावर कट्स एंड एवरीथिंग। मैं आई थिंक पिछले हफ्ते मैं मकिनी आ रही थी एंड आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम डैलस, एंड वेन आई वॉज टर्निंग ऑन मैकडर्मट ड्राइव, वहाँ पे सारे गैस स्टेशंस, फास्ट फूड जॉइंट्स, ऑल ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन ऑन दैट स्ट्रीट, दे वर ऑल क्लोज्ड बिकॉज देर वॉज पावर आउटेज। तो गाइज, if you ever get into some situation like that, don't let your business suffer. Contact Tara Commercial Energy. Business owners in Texas, are you looking for a smarter energy solution? Trust Tara Commercial Energy. They are proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Exactly guys, don't let your businesses suffer, kyunki DFW mein upar seedhe upar niche hota rehta hai power situation, lekin don't let your work suffer because of it.

क्या है हम क्या, और मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, लेकिन गाइस मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आपको अपना घर बनाना है एंड यू नो हैविंग अ होम और हैविंग योर ओन स्पेस हैज़ बिन योर ड्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी. अपने सपनों का घर सर्च करिए यार, दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड दे विल फाइंड द राइट लोन ऑप्शन विच इज टेलर टू योर नीड्स. चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हैं या अपग्रेड करें या रिफाइनेंस करें, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे. कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया।
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया।
11: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
16: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
17: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
19: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
16: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
20: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

Guys, that was from the new movie Alpha featuring Alia Bhatt and what is this other girl's name? Sharvari, yes. Featuring the two of them, it's like a girl spy movie. It's like Black Widow. At least it's giving that vibe. But I don't know. आप खुद जाके देख सकते हैं. तो भाई ब्लैक विडो से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है ये चीज़. वो ये है कि 1 अगस्त को प्रभु देवा इज कमिंग टू टेक्सास. पिकासो की पेंटिंग मेरे पीछे पकड़ के टेक्सास में नाचे मिल के. इट टोटली डज नॉट मेक सेंस बिकॉज इट डजेंट हैव टू. व्हेन प्रभु देवा इज कमिंग टू टेक्सास इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली मेक brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadaudia, Alexander Noel, Harini Neelakandan, Natasha Sherpa, Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. That is right. Saturday, 1st August at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-2333-3828. या फिर अगर आप हमारे फनेशिया के बहुत बड़े फैंस हैं विच वी नो दैट यू आर देन यू कैन बुक द टिकट्स डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ आवर सोशल मीडिया पेजेस विच इज़ इधर इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनीथिंग यू नो. सो यू कैन गो बुक फ्रॉम फनेशिया ऑल्सो डायरेक्टली इन केस यू डोंट वांट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड लुक फॉर द लिंक एवरीवेयर एल्स है ना. तो गाइज लाइन पे बने रही है नॉट लाइन पे रेडियो पे बने रही है बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग म्यूजिक कमिंग अप राइट आफ्टर दिस एंड 8 o'clock के बाद यू नो व्हाट टाइम इट इज इट्स टाइम फॉर द गिव अवे आफ्टर 8 p.m. सो स्टिक अराउंड फॉर दैट.

0: India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: जीनी हुकम मेरी आखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरी आखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
10: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
11: Documents या parcel भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर relocate करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी transport करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
15: Hello, my beautiful friends. How are you all doing today? This is Ippy the Hippie, and you guys are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Fill in the Blanks. Okay, आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं. आप उसमें Dallas भरिए, Plano भरिए, Frisco भरिए. कहीं भी है वो भर दीजिए, कोई बात नहीं, सब चलेगा. वैसे तो डैलस बोलते हैं, लेकिन डैलस इज़ बिगर देन डैलस, इट्स काइंड ऑफ लाइक DFW, राइट? तो गाइस, इट इज़ 8:05, यू नो व्हाट टाइम इज़ 8:05, इट इज़ आवर गिव अवे टाइम, दैट इज़ करेक्ट. लेकिन मैं पहले ये तो बता दूँ कि गिव अवे में आपको मिलेगा क्या. आज का गिव अवे, इस हब पूरे हफ्ते का गिव अवे इज एक्चुअली फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. हियर इज योर चांस टू विन एनी डोसा यम ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन्स इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसाज, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज एंड दे ऑल्सो हैव जैन फ्रेंडली ऑप्शंस. कहाँ पे है ये? दिस इज हाईवे 121 और कस्टर्ड जंक्शन पे. तो गाइज, जो गिव अवे के लिए कॉल करें फिर मुझे दोबारा मत पूछना कि कौन सा क्या जीता मैंने. भाई ये जीता आपने एक डोसा और एक फिल्टर कॉफी. जिसने जीत गया वो आप जाओ सैन इडली में और यू कैन गो रिडीम योर डोसा एंड फिल्टर कॉफी राइट देयर. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाना, बड़ा मजा आएगा. वाओ, मेरे कितने दिन नहीं हुए, कितने दिन हो गए मेरे को अच्छे से डोसा खाए हुए, है ना, बैठ के एकदम. एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, द गेम इज वेरी सिंपल. अगेन आई विल प्ले यू ए सॉन्ग एंड यू हैव टू टेल मी the Bollywood copy of that song. This one is super super easy, very very easy. theek hai, I'm going to select two winners. to guys dhyan se suniye gana. pehla gana to ye hai ki gaane ka naam bataiye, theek hai, and dusra, if you are the first caller who connects it to then you tell me the name of the song. and for my second prize winner, whoever is the second caller that gets connected, tell me the name of the movie that it is from. Very easy, super super easy. It's from the early 2000s. And actually, मैंने कुछ दिनों पहले ये गाना बजाया था and I did not even know this was a copy. तो मेरा दिल, जैसे ही आज मुझे पता चला कि ये भी copy है, एकदम चूर चूर हो गया. मैंने कहा यार authentic चीजें, original चीजें क्यों नहीं है हमारे Bollywood में. I like it, but also this is not nice. I thought this thing was totally original. आगे बढ़ते हुए गाइज, माई फोन नंबर इज 972-235-5555. ठीक है, तो

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
2: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: लो

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio.
9: Hello everyone, we are back. This is your bestie, Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Fill in the Blanks. Okay, so guys, I love it when my regular listeners call up. Aap jab roz, matlab roz to nahi, jabhi bhi mera show hota hai, aap, I don't know, roz shayad. Lekin at least mere show ke time pe, aap zarur ek baar mujhe call karte hain, hello bolte hain, mera haal chaal poochte hain. I love it. You know, because living alone in a foreign country and just hustling from morning till night, I mean, you don't really, at least I don't really have a social life. My family lives in India. I can't even go and see them because I'm in the middle of transition, wagaira wagaira. Bahut kuch chal raha hai. To uske beech mein mere zyada dost wagaira bhi nahi hai. I don't get a lot of time to hang out with them. But when you guys call me up and tell me about your day-to-day events, I feel so connected. I feel like there's an extended family here and I absolutely love it. Thank you so much for all the love. Usse yaad aaya ki I just got a call from Zimran, who is one of our regular listeners. Zimran lost his father a few years ago and today it's his father's birthday and he really wanted this song dedicated to his dad. I hope, Zimran, your dad is happier wherever he is. And I'm sure you have made him like super, super proud. And I hope you're doing your new job training really, really well. We do miss your calls every single day. So this goes out to you.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

And that's how we do it. That's right, guys. Amit Trivedi knows, he knows how we do it. You know how we do it. I know how we do it. That's how we do it, because we do it right. That's how we do it. वैसे, we की बात करते हुए, I want to talk about a little bit about, you know, what's happening in Delhi right now. Not just in Delhi, पूरे nation में actually वो चल रहा है. You know, the whole student protest over the school exam newspaper, over the school exam papers. Oh no, not exam, not school exam. NEET, engineering के जो exam papers हैं, जो central examination है, उसके papers जो leak हो गए हैं, and then it is said that the education minister is somehow involved in it. And the way the nation has woken up with the cockroach Janata Party and all the protests, and you know, Sonam Wangchuk was also on a fast. उन्होंने कुछ दिनों पहले अपना fast तोड़ा है. You guys already know what's happening. I mean, I don't need to tell you what is happening with the protests and stuff. The whole nation is kind of engaged. कोई बॉम्बे से खाना भेज रहा है to some students. कुछ कुछ students के interviews तो मैं देख रही थी Facebook पे. You know, घूमते घूमते वो reels आ जाती है ना. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही इतना दुख हो गया, कहते हैं मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो खड़ा हुआ था साइड से, मैं जा रहा था और पुलिस ने मुझे उठा के मार दिया, बिकॉज द पुलिस इज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड इज जस्ट फॉलोइंग लाइक स्टेट्स ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग. तो इट्स रियली हार्ट वार्मिंग. बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं. सोचो आप लोग भी जो यहाँ पे टेक्सस में, ज़्यादातर लोग मेरी तरह नहीं होते हैं, मतलब नॉट एवरी वन इज अ म्यूजिशियन. मोस्ट ऑफ यू पीपल हु हैव कम फ्रॉम इंडिया हैव अ टेक बैकग्राउंड. यू हैव गिवन दोज इंजीनियरिंग एग्जाम्स. इमेजिन आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, यू नो, टू यू नो अर्न अ लिविंग, मेक अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ, देन हाउ वुड यू फील? आई थिंक इट्स रियली हार्ट वार्मिंग एंड यू नो समथिंग शुड रियली बी डन. हाउएवर आई नो दैट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली मुझे नहीं पता, बिकॉज यू नो हर 10-15 सालों में ऐसा कुछ ना कुछ आता है. एक बड़ा सा प्रोटेस्ट होता है, थोड़ा गवर्नमेंट में तहलका मचता है, फिर बाय द एंड ऑफ इट अगेन द सेम पीपल हु हैव बीन इन पावर दे स्टिल रिमेन इन पावर. कुछ सालों पहले हमने आम आदमी पार्टी का ये सिचुएशन देखा था दिल्ली में. आप हैड कम इन टू द पिक्चर, नाउ दिस कॉकरोच जनता पार्टी. आई होप वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर द बेस्ट, एंड आई रियली विश द स्टूडेंट्स, you know, finally can get some justice, right? लेकिन अगर नहीं जस्टिस मिला तो क्या कर सकते हैं, सच इज लाइफ. हाउएवर आगे बढ़ते हुए गाइज, डिड यू नो दैट होको इज फाइनली इन नॉर्थ टेक्सस? आई हैव नेवर ट्राइड होको बिकॉज देर इज नॉट वन होको चेन इन दिल्ली. हाउएवर आई हैव हर्ड दैट इट्स अ रियली पॉपुलर चेन फ्रॉम इंडिया एंड दे आर फाइनली हियर इन नॉर्थ टेक्सस. दे आर लोकेटेड ऑन 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को 75034. And you should definitely go try out their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, and their most famous cold coco, which people swear by apparently. So you don't have to wait for your next trip to India. They also have 6 locations all across America. So make sure you go check it out. Visit hoco.us. Come hungry and leave with a smile.

गाइज लिल करेक्शन, दोज NET एग्जाम्स जो मैंने इंजीनियरिंग का हुआ था, अपेरेंटली दैट वॉज माई मिस्टेक, आई डेंट रीड अप माई इन्फॉर्मेशन वेल, मेरे फैक्ट थोड़े से गलत हो गए. दैट्स फॉर द मेडिकल एंड डेंटल एग्जाम्स. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी माई लिसनर्स. यस भाई, मतलब फेसबुक पे जो थोड़ा बहुत न्यूज़ आता है इधर उधर कई बार गड़बड़ हो जाता है, एंड वी आर जस्ट स्क्रोलिंग अवे इन अ हरी, एंड आई ऑनेस्टली डोंट टेक दैट मच डिटेल व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माई वर्क डे, बट थैंक यू सो मच for that correction.

गाइज, अभी ना मैं बिटवीन द सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स आई स्क्रोल, डूम स्क्रोल, यू स्क्रोल, आई स्क्रोल, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट रियलिटी. तो वो स्क्रोल करते करते ना एक बड़ी सही चीज़ आई, बोल आई मेरे फीड पे. अ बोल, एक कटोरी, बट अ वेरी स्पेशल कटोरी. इट्स कॉल्ड द बेरी बोल, वेयर यू कैन वॉश बेरीज. नाउ वॉट इज सो स्पेशल अबाउट इट? इट्स सो कूल, द डिज़ाइन ऑफ दैट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. इट्स लाइक हाफ ऑफ अ टीपॉट, यू नो हाउ इट हैज दैट स्पाउट, लाइक जहाँ से पानी गिरता है उसका. आई एम अ टीपॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट, दिस इज माई हैंडल, दिस इज माई स्पाउट. वो वाला स्पाउट जो वहां से, उस स्पाउट से आप पानी अंदर डालो, ठीक है, और वो बोल जो है, बोल के अंदर जैसे वो सिट्रस जूसर नहीं होता, वो जो ट्राइंगल सा कोन सा बना होता है, वैसा सा ही एक कोन है बोल के बीचों बीच, और बेरीज आप उसके चारों तरफ फैला दो, ठीक है, और स्पाउट के ऊपर से पानी डालो, तो पानी जब जाता है तो बेरीज ऐसे गोल गोल गोल गोल डांस करते हुए, यू नो, घूमती रहती है अराउंड दैट लिटिल सिट्रस थिंग. आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट इट इज सो कूल. आई थिंक दे ऑल्सो यूज इट फॉर सिट्रस जूसिंग. आई एम अज्यूमिंग यू कड यूज इट दैट वे टू, बट ऑल्सो इट लुक्स सो फन. नाउ डू आई नीड इट? नो. डू यू नीड इट? एब्सोल्यूटली नॉट. डू वी वॉन्ट इट एंड डू वी थिंक इट्स कूल? ओह या, बिकॉज समटाइम्स इट मेक्स नो सेंस, बट समटाइम्स यू जस्ट डू इट बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी. वेल, हैप्पीनेस से याद आया, गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से डील कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू टेक अ चिल पिल, यू नो द बेस्ट वे टू डू दैट इज लाइक मेडिटेशन. एंड इफ यू हैव डिफिकल्टी इन लाइक फोकसिंग एंड मेडिटेटिंग, विच आई नो इज हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स अ प्रैक्टिस. नॉट एवरीबडी, आई मीन इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल कि आप ध्यान करने बैठो और सडनली आप, मतलब महर्षि की तरह आप ध्यान करते रहो घंटे भर तक. वो नहीं होता है, वो प्रैक्टिस से करना पड़ता है. 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे करके बढ़ाना पड़ता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग लाइक दैट, देन ओशो यूनिवर्सल आर ऑफरिंग ओशो मेडिटेशन रिट्रीट दैट्स हैपनिंग फ्रॉम 31 जुलाई टू 2 अगस्त एट ओशो कैवल्या धाम इन डेनिसन, टेक्सस. वेल, टेक अ ब्रेक, मे बी यू नीड ए स्टेकेशन एट ओशो रिट्रीट. Experience the powerful meditation techniques, music, celebration, deep silence, and inner transformation under the guidance of Swami Prem Maitreya. Whether you're a beginner or an experienced meditator, everybody is welcome. Limited seats are there, so make sure you register in advance in case you want to just, you know, dial out and just be like, okay, tata, goodbye, world. I just want to, like, get lost in this meditation thing for a little bit and then come back to life. Then this is the place to go. WhatsApp 214-395-6757. 214-395-6757. Your journey to inner peace begins here.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: It's Hoko.
8: अरे बस भी करो यार।
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज। Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
10: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
11: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
12: Hello guys, you are listening to Fun Asia Radio. मैं बिल्कुल वैसे नहीं बात करती, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़ा मूड चल रहा था तो I wanted to kind of imitate it because that's what I do. I am a voice instructor or voice. अगर आप सिंगिंग सीख रहे हैं ना, कभी किसी भी टीचर के पास जाएंगे, सबसे पहली चीज़ आपको सुर के बाद वो बोलेंगे, अच्छा यू वांट टू लर्न, कॉपी मी, कॉपी माय सिंगिंग, मेरे नोट्स कॉपी करो, और मेरी सारी ज़िंदगी उसी से ही चलती है. हाउएवर दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोइंग फॉर. गाइज, यू आर स्टिल लिसनिंग टू हिप्पी द हिप्पी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज़ माय शो. एन इवनिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स, डैलस इन दिस केस. So, guys, we only have about 30 more minutes of today's show. Actually, not even 30. It's more like 26 minutes. So, baatein kam karenge, ads bhi kam hi bolungi main. मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत सारे मज़ेदार मज़ेदार गाने प्ले करूँ, सो दैट यू कैन रिलैक्स and wind down for tonight. Tomorrow is going to be my last day this week. So make sure you tune in tomorrow, okay? This part of the show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the US. If you are a small business owner or self-employed person, or if you have a startup or an established business, they offer innovative financial solutions tailored to your needs. Don't be like me. Don't calculate aapke kahan se kitne paise aa rahe aise aise karke. Just give AG FinTechs a call, whether it is credit card reconciliation, payroll, bookkeeping, tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success. AG FinTechs is your partner in building a strong financial future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

We are back. That song, by the way, released only like 3 weeks ago, released on June 23rd, 2026, and it is already at 2 million views. Isn't that amazing? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो न्यू इंडी का जो साउंड आ रहा है ना, एवरी वन इज मेकिंग देयर ओन सॉन्ग्स एंड यू नो इट्स सो ऑथेंटिक, इट्स सो रियल, बिकॉज कॉपी तो नहीं है कम से कम. अगर है भी तो हमें तो अभी तक नहीं पता चला है, तो वी विल प्रिटेंड कि नहीं है कॉपी. बट आई हैव अ फीलिंग दैट दीज म्यूजिशंस, द न्यू एज म्यूजिशन, दे आर रियली ट्राइंग, दिस न्यू एज पीपल, यू नो. और ये हमारे जनरेशन से तो आया ना, मतलब मिलेनियल्स नहीं होते अपने गाने 10-12 साल पहले बनाते हुए, तो ये जेंजी ऐसे नए नए गाने नहीं बना रही होती, और 2-2 मिलियन व्यूज नहीं होते इनके. टू टू या ये तो 224 मिलियन व्यूज जा रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू. सो वी शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट फॉर इट. गाइज एंजॉय, यही हमारा सफर है और ऐसे ही हमारा चलता जाएगा सफर. वी आर हियर फॉर 15 मिनट्स, आई एम हियर फॉर 15 मिनट्स. तब तक के लिए यू एंजॉय दिस ट्यून.

यारो दोस्तों, इट इज 9:51 ऑन द क्लॉक. मेरे जाने का टाइम आ गया है. सो स्टे कूल, डोंट लेट दिस हीट डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस. बिकॉज यू नो वॉट, आज पता क्या हुआ, आज मैं सारे दिन काम करते करते ना, आई एक्चुअली गॉट फ्री लाइक वे अर्ली बिफोर आई हैड टू कम टू द रेडियो थिंग. आई गॉट होम, एक्चुअली आई गॉट फ्री एट 1:30. देन आई वेंट टू द जिम, और मतलब मैंने इतना भी नहीं चला आज, मतलब नॉट दैट मच. आई हैड मे बी डन लाइक 5,000 स्टेप्स बाय लाइक 1:30, एंड देन अराउंड 1:30 आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर लिटिल बिट, एंड देन आई वेंट टू द जिम. एंड आई थॉट कि ठीक है, यू नो वट, आई जस्ट वॉक फॉर 20 मिनट्स. और उस 20 मिनट में एसी में चलते चलते मेरी हालत इतनी खराब हो गई ना, ऑल द सन वॉज ड्रेनिंग ऑल ऑफ माई एनर्जी आउट, एंड आई वॉज सो डिहाइड्रेटेड. मैंने कम से कम वो जो स्टैनली वाली बॉटल नहीं होती बड़ी वाली 40 ounces की, मेरा चौथा चल रहा है वो. आई हैव फिल्ड इट 4 times टुडे, एंड दिस हीट इज लाइक सो बैड. लाइक मुझे दिल्ली की गर्मी भी पता है, जिसमें आपको गर्म फील होता है ग्राउंड से निकलते हुए. आई हैव फेल्ट दैट, यू नो, योर फीट मेल्टिंग, बट दिस इज फीलिंग लाइक डिफरेंट. इट द एयर इज ऑल्सो वार्म. इट्स लाइक दिल्ली की गर्मी में ना लू बोलते थे उसको, गर्म हवा को चलते हुए लू बोलते थे, वैसी वाली फीलिंग आ रही है. सो स्टे कूल, कीप योर इलेक्ट्रोलाइट्स गेम ऑन, एंड हैव एन आइसक्रीम इन द इवनिंग, यू नो वाई नॉट, इट फील गुड. तब तक के लिए गुड नाइट, आई विल सी यू ऑल टुमारो. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ. हैव अ वंडरफुल कूल इवनिंग.

0: crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
2: In today's busy world when was the last time you truly paused and listened to yourself Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison Texas Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
1: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती, I'm sorry।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर।
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहाँ हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
3: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

0: भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
1: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है। लाओ दबा।
0: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
1: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
0: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
1: बचा है।
0: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
1: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: Hi, Dallas. This is Ranbir Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले लें?
2: अरे मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
3: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।
1: He's got very little time.

0: हाँ भाई सेठी,
1: हाँ जी मनीपा जी,
0: पहुंच गए हैं।
1: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
0: ओ पार्टी दी कसरे तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू
2: पाजी? उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
0: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नु मिलन आया सी एक बारी।
1: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
0: तू लगता तू पैग लाए हो या?
3: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
1: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
3: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
0: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
1: पर दादी

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
2: कहा पार्टी करो कहना चुनी मान दे जिने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करो और दुआ में तेरा नाम आए।
1: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए.
13: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी स्क्रीन

डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: It's Hoko.
5: अरे बस भी करो यार.
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
0: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
17: सच में? सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. H-E-B mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi H-E-B ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
10: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया.
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया.
13: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.senadainc.com today.
16: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
17: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
18: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure veg.

0: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
1: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी, फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
0: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
6: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
7: Thank you very much for joining us in this hour of the program. Those of you that have just tuned in, welcome to the show. We have a cool front. Good news for you. We are going to be at 99 degrees. Yes, that's what a cool front is called these days. The weather forecast says 99, so no triple digits. By the way, we were at 106 yesterday, but upper 90s today. Heat advisories still in effect.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
0: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं ही दो इन हूं।
10: क्रेविंग डिलिशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, रेड हॉट चिली पेपर इज डैलस नंबर 1 चॉइस फॉर इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन कुजीन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया.
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
0: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
3: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
4: Hi, Dallas. This is Ranbir Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: ये तारा वो तारा हर तारा।
17: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
18: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
19: हाँ।
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ।
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ।
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2414।

0: सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Atif Aslam singing the words of Amitabh Bhattacharya to the music of Pritam. That, ladies and gentlemen, was Bajrangi Bhaijaan. How much time does your doctor spend with you? 5 minutes? 10 minutes? At Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're family. So for you, for your family and for the health of our community, it's Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibroscan for alcoholic-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and much more. All available at the Passion Health. Schedule your appointment today by calling 214-666-6259. You can book an appointment at 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is their passion. So make sure you call them. Passion Health Primary Care, 214-666-6259. And now let's get you some more messages from our sponsors.
1: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
2: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
5: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
6: Hoko.
7: It's Hoko.
8: अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
6: Hi, this is Konkana Sen Sharma, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: the magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: बिल्कुल करेक्ट 24/7 एंटरटेनमेंट स्टेशन फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM. हेलो नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू गपशप गली विथ मी टू. और शबनम जी को मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं टू से अ बिग शाउट आउट अ बिग थैंक यू टू हर फॉर एन अमेजिंग मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. चले शुरू करें आज का दिन जो है 23rd of July. घड़ी में बजे हैं ऑलमोस्ट 10:09. बस 3:02 एंड यस वी आर एट 10:09 राइट नाउ बाय द स्टूडियो क्लॉक. और रेखा भारद्वाज के इस गाने के बाद लगा कि एक और रेखा भारद्वाज का ही गाना लगाया जाए आप लोगों के लिए. बिग फैन ऑफ अ वॉइस.

नमक तो इस भाई मौसम में भी है और वो है हमारे स्वेट का नमक यार. सीरियसली आफ्टर द हीट इंडेक्स रीच 120 डिग्रीज इन सम प्लेसेस इन DFW मेट्रोप्लेक्स येस्टरडे, आज थोड़ा सा कम होगा, लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल. फिर भी हीट इंडेक्स हमारा होगा कुछ 109 के आसपास, 109 लेडीज एंड जेंटलमैन. इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बताएंगे आपको इन द नेक्स्ट सेगमेंट. यस, एक्सट्रीम हीट कंटिन्यूज इन नॉर्थ टेक्सस विथ अनदर हीट एडवाइजरी दैट इज स्टार्टिंग एट नून ऑल द वे टिल 8 PM, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. एक और अर्दी सी आवाज, बड़ी रस्टिक सी आवाज, और ये है वर्षा सिंह धनौ का.

एंड दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन प्रियंका बर्वे. ये जो गाना आपने सुना, ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग. दिस इज अ कवर वर्जन बाय प्रियंका बर्वे. ओरिजिनल था बाय मोनाली ठाकुर, एज वी ऑल नो फ्रॉम द फिल्म. गुड क्वेश्चन, कौन सी फिल्म से है वो गाना? नहीं सॉरी, कभी नीम नीम. इट वॉज एक्चुअली नॉट हर, इट वॉज मधुश्री. यस, युवा का गाना था ये. मैंने एक्चुअली जिस जो अगला गाना प्ले करने वाली थी ना, उसके साथ थोड़ी सी मैं भावनाओं में बह गई थी. तो द ट्रैक दैट आई वॉन्टेड टू प्ले अर्लियर वॉज या इज इन मोनाली ठाकुर्स वॉइस एक्चुअली. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि इस गाने में एक AR रहमान की खुशबू आई, तो मैंने सोचा वो गाना लगाते हैं पहले, एंड देन वील कम बैक टू द मोनाली ठाकुर सॉन्ग दैट आई वॉन्टेड टू प्ले. इतना कन्फ्यूजन एक गाने के पीछे, टोटली अननेसेसरी. वेल, वॉट इज नेसेसरी राइट नाउ इज कि ये जो गाने की खुशबू है ना, होपफुली आप तक पहुँच रही है, क्योंकि ये गाने हैं जो दे आर वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स. दे आर सो वेल मेड सॉन्ग्स, वेल संग सॉन्ग्स, ब्यूटिफुली रिटन सॉन्ग्स. मतलब हर चीज, हर एलिमेंट इन गानों का बिल्कुल परफेक्ट, इंक्लूडिंग द पिक्चराइजेशन ऑफ दीज सॉन्ग्स, है ना. तो ऐसे में एक और चीज मुझे याद आती है, वो है ज्वेलरी की. मतलब क्राफ्ट्समैनशिप की जरूरत होती है. एक डिजाइन जो कोई इमेजिन करता है, उसको एक्चुअली पेपर से उतारना इन गोल्ड और डायमंड इज प्योर आर्ट. और मालाबार इसी में अपनी क्या कहते हैं ना, बाजी मार लेते हैं ये. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, विच इज़ ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, यहाँ पे शानदार डिज़ाइंस आपको मिलते हैं, बी इट इन डायमंड और गोल्ड. वो ब्यूटिफुल कंगन से लेकर नेकलेसेस, रिंग्स, ईयर रिंग्स, एवरीथिंग दैट यू गेट हियर, राइट फ्रॉम कॉन्टेम्प्रेरी टू द ट्रेडिशनल स्टाइल्स, यू गेट एवरीथिंग फॉर योर वेरी स्पेशल ओकेजन्स. तो यस, थोड़ा सा स्पार्कल ऐड करें अपने स्पेशल दिन में मालाबार की शॉपिंग के साथ. वंस अगेन, इट इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी स्टोर ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को.

One of the purest songs of 90s with that pure element of magic in this one, A.R. Rahman's Magic. Once again, thank you very much for tuning in. ये है गपशप गली with me too. तो अब ये देखा जाए कि मौसम हमें क्या सर्व कर रहा है. फनीजर रेडियो तो आपको कूल गाने सर्व करता है हमेशा. आपकी पसंद, कुछ मेरी पसंद, कुछ मिला जुला ये होता है हमारा सिलसिला. लेकिन यहाँ पे वेदर रिलेटेड क्या सर्व हो रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं. जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ 120 degrees it was the heat index was yesterday for many areas. Aaj wo kam hokar kuch 109 hoga, 109 that it will be. That's the heat index that I'm talking about. Or heat advisory is once again in action today as well, until 8 p.m. noon till 8 p.m. this is the time when you have to be very cautious when you're stepping out. Stay hydrated, sunscreen lagaiye, topi pehniye, all of those things, all right. Aur iske alawa ye batana chahti hu, आज आफ्टरनून टेम्परेचर्स हमारे कुछ 100 के आसपास ही रहने वाले हैं. कल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकता है. ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर वील सी राइजिंग टुमॉरो, एक्चुअली गोइंग इनटू द वीकेंड एज वेल. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म बर्था जो कि गल्फ में आया है. एंड कोस्टल एरियाज में काफ़ी बारिश वगैरह भी हो रही है, सिवियर वेदर भी हुआ है. लेकिन हमारे लिए क्लाउड कवर होगा और फ्यू एरियाज माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ शावर. द स्टॉर्म इज फोकस्ड टू मेक लैंडफॉल इन टेक्सास टुडे आफ्टरनून एक्चुअली. एंड हमारे लिए कल थोड़ी बहुत शायद बारिश हो डैलस फोर्ट वर्थ एरिया में. लुकिंग अहेड टू द वीकेंड एंड इन टू नेक्स्ट वीक, द हीट क्रैंक्स राइट अप बैक अप अक्रॉस द रीजन. और हमारा टेम्परेचर वापस ट्रिपल डिजिट्स में जाने वाला है आफ्टर अ ब्रीफ डबल डिजिट दैट वी आर गोइंग टू सी टुमॉरो, लेडीज एंड जेंटलमैन. नाउ दैट बीइंग सेड, वेरी क्विकली राइट नाउ द टेम्परेचर इज 87 degrees, टुडेज हाई अराउंड 100 degrees that we are going to have. Heat index will be anywhere between 105 to 110. Stay safe and stay cool with Funisha Radio 104.9 FM. This is a cover version of Monali Thakur's song. Monali Thakur ki hi awaaz hai. This unplugged MTV version that I'm going to get for you.

0: ले जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
12: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग।
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
12: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
12: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
14: Tracks that put you on the right track.

फ्रॉम द 2009 फिल्म वॉन्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये ईद का रिलीज था और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दैट चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सलमान खान करियर, जो थोड़ा एक लल देख रहा था. अंडर परफॉर्मिंग फिल्म थी उनकी, उसके जितनी भी रिलीजेज हुई थी उसके पहले 2000s में. एंड देयर फॉर दिस फिल्म वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर सलमान खान्स करियर. एंड गेस वॉट हु डिरेक्टेड दिस फिल्म, इट वॉज प्रभु देवा. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग शाउट आउट टू हिम. और पूरी जनता जो प्रभु देवा की दीवानी है, दे कैन वेरी वेल सी हिम इन पर्सन एंड एन्जॉय ऑल द डांस परफॉर्मेंसेज. भगवान जाने कैसे करते हैं, मतलब बॉडी में कोई ना एक हड्डी नहीं है ऐसा लगता है उनके. इतना कमाल का डांस करते हैं, सीरियसली. द नेम दैट ही हैज लविंगली बिन गिवन बाई इंडिया, एंड इट्स इंडियाज माइकल जैक्सन दैट ही इज कॉल्ड, एंड इट इज़ फॉर डेफिनेट रीजन. एंड यही रीजन आप इन पर्सन देखने जा सकते हैं. लॉरेन गोतले और सोनल के साथ साथ अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी एंड नताशा शेरपा एंड ऑल्सो सानवी मेघना, हु आर गोइंग टू अकंपनी हिम इन दिस अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट दैट यू कैन विटनेस ऑन ऑगस्ट 1st एट द टेक्सास ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन थिएटर ग्रैंड प्रेरी में. और टिकट्स के लिए आप हमारे फनीशिया नेटवर्क सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं और इजीली बुक कर सकते हैं, क्योंकि पिंड है वो पोस्ट और आपको बिल्कुल टॉप पे मिलेगा द प्रभु देवा लाइव कॉन्सर्ट. यू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कॉन्सर्ट एंड द टिकट्स एज वेल राइट देयर. मीडिया पार्टनर ऑफ कोर्स फनीशिया नेटवर्क, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड आप अपने टिकट्स ज़रूर बुक कर लें. अगर आपको कॉल करके टिकट्स बुक करना है तो 2483338 इज़ दैट अदर यू नो ऑल्टरनेटिव फॉर यू. मथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप को थैंक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आ रहे हैं प्रभु देवा लाइव टू डैलस फोर्ट वर्थ फैंस. एंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉन्टेड का वो गाना था वो, और ईद का ये एक फिर एक कैसा कहना चाहिए कि एक नॉर्म सा बन गया था. दिस फिल्म एक्चुअली ब्रोक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट डिफाइन द फेस्टिव सीजन. और उसके बाद से ये ईद रिलीज का ये जो चक्कर है, ये जो सिलसिला है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये शुरू हुआ फ्रॉम वॉन्टेड मूवी दैट रिलीज इन 2009, डायरेक्टेड बाय द वन एंड ओनली प्रभु देवा. उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी for Bollywood, just FYI, ladies and gentlemen. And yes, taking you to that one film that also released during, you know, the Eid window, and it was the film Kick, starring Salman Khan once again, Jacqueline Fernandez ke saath. And guess what, ye aaj hi ke din release hui thi, isi liye to itni charcha. Aur Kick ka gaana main lagane wali hoon aap logon ke liye, wo nahi jo Salman Khan ne gaya hai. क्योंकि आई ऑनेस्टली दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड सलमान खान फैंस, लेकिन उन्हें देखिए गाना उतना अच्छा नहीं आता है. इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स जिनको सच में काम नहीं मिलता, उनको मौका मिलना चाहिए था. जैसे कि शान की आवाज़ आपने सुनी, शान को गाने नहीं मिलते हैं यार आजकल. एंड ही इज़ ओपन अबाउट इट दैट उनको आजकल साइन नहीं किया जाता है बड़ी फिल्मों के लिए या बॉलीवुड फिल्म्स के लिए. वहाँ पर अगर एक्टर्स भी गाने लगे जो कि मीडियोकर सिंगर्स हैं तो फिर ये बात कुछ हजम नहीं होती. वैसे जो हजम हुई वो है किक लोगों को, और वो सिर्फ सलमान खान के फैंस को हजम हुई. एंड इट इज ऑन दिस डे दैट इट रिलीज्ड. आफ्टर ऑल ये सेगमेंट ही तो यही है कि आज के दिन सिनेमा हिस्ट्री में कौन सी फिल्म्स रिलीज हुई थी. इट वाज किक इन बॉलीवुड इन द ईयर 2014.

0: एंड दिस वॉज द रिलीज ऑफ 2014, आज ही के दिन रिलीज हुई थी किक. और किक का ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन इससे भी ज़्यादा मशहूर हुआ था सलमान खान का गाना ऑफ दिस अनदर वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग ओनली दैट वॉज इन सलमान खान्स वॉइस. बट आई ट्रूली ट्रूली फील कि नीति मोहन डिड अ बेटर जॉब कंसिडरिंग कि सलमान खान की आवाज़ को ऑटो ट्यून किया गया था. यू आर लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विथ मी टू, और मेरी गपशप अब जिस मोड़ पे है वो है 1993, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आज ही के दिन एक बहुत ही बढ़िया फिल्म रिलीज हुई थी. एंड लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिविया हियर एंड लेट्स सी इफ यू कैन गेस द सॉन्ग, क्योंकि अगर आप गाना गेस करते हैं तो आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से कमाल का तोहफा यार. एंड दैट तोहफा कैन बी ओनली फूड, राइट? ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न होगा आपका, अगर आप मुझे बता पाएं ये फिल्म कौन सी है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ. कुछ मैं देती जाऊंगी आपको, सप्लीमेंट करती जाऊंगी कुछ क्लूज के साथ, एंड द फर्स्ट वन टू गेस द नेम ऑफ द मूवी इज गोइंग टू विन दिस. ऑलराइट, सो 23rd of July 1993 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी, एंड महेश भट्ट ने इसे डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था ताहिर हुसैन ने. कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए डायलॉग्स एक्चुअली आमिर खान ने लिखा था, एंड इनफैक्ट द स्टोरी ऑल्सो वॉज को रिटन बाय आमिर खान एक्चुअली. देन वन कैन इमेजिन दैट ही वॉज द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म, इसमें तो कोई शक ही नहीं. ये बता देती हूँ कि ये इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स, और बेस्ट एक्ट्रेस गया था जूही चावला को, और बेस्ट लिरिक्स के लिए समीर को भी अवार्ड मिला था फॉर दिस फिल्म. एंड दैट सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले इज दैट अवॉर्डेड सॉन्ग दैट यू गोना लिसन इन जस्ट अ बिट. इफ यू कैन टेल मी कौन सी फिल्म की यहाँ पे बात हो रही है तो फिर आप जीत सकते हैं रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से. एंड जस्ट मेक श्योर दैट आपने रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से एक महीने के अंदर आपने नहीं जीता हो, देन यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट टू आंसर. क्या आपने जीता है एक महीने में रेड हॉट चिली पेपर से? यू लाइव ऑन एयर.
1: नहीं नहीं जीता है, लेकिन शायद मुझे बतानी है आंसर, बस शायद गुलाम मूवी है.
0: नहीं, इट इज नॉट गुलाम, बिकॉज टेक द क्लू हियर कि आमिर खान है, आपने वो सही गेस किया, और मैंने कहा कि बेस्ट एक्ट्रेस जूही चावला को मिला था इस फिल्म के लिए. ऑलराइट, कम बैक. Sure thing, come back if you can recall the name of the film. Once again, 972-235-5555 number in the studio. Let's hear it from this next caller here. Haan ji, bataye aapne.
2: Haan ji, good morning, good afternoon, how are you all today?
0: Good
2: you guys
0: morning.
2: Doing great job. I'm really thoroughly enjoying the program.
0: Thank you so much, means the world to me. So tell me first of all your name, and tell me if you've won from Red Hot Chili Pepper in the past 30 days, if you have.
2: No ma'am.
0: Absolutely great, you definitely are a candidate to answer. Now tell me, what's the name of the film?
2: The film name is Qayamat Se Qayamat Tak.
0: No, it is not Qayamat Se Qayamat Tak, because it released in the late 80s, Qayamat Se Qayamat Tak. And this movie that I'm talking about released in 1993. Come back, all right?
2: All right, thank you.
0: Thank you. Let's go to the next caller. Let's find out if anybody can guess this one. You are live on air.
3: जी, मूवी का नाम हमें राहे प्यार के.
0: तालियां आपको जरूर दूंगी अगर आप मुझे बताएं कि पिछले एक महीने में आप जीते हैं रेड हॉट चिली पेपर से.
3: नहीं, नहीं,
0: अरे
3: नहीं,
0: परफेक्ट नहीं. सर जी नाम बताएं.
3: रहीम.
0: रहीम, आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से इधर ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न. कंग्रेचुलेशन, इट इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट द बेस्ट फूड, यू नो दैट राइट? रहीम जी आप जरा होल्ड करें, आपकी पूरी डिटेल्स लेती हूँ और वो गाना लगाती हूँ जिसके लिए समीर को अवार्ड मिला.

0: Listen, guys, this song is so amazing and it's nostalgic 90s that I'm playing. तो ये पूरा गाना नहीं सुना ऐसा हो सकता है क्या? ब्रेक के बाद सुने.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
13: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
14: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
15: Aaj sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
16: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
15: Par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
16: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai. Especially jab Vanessa Events ka saath ho.
15: Sach mein? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

41st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और तब से आज तक अगर मैं लूँ तो अलका याग्निक के सारे गाने वी रियली लव. आई होप वन डे शी कम्स बैक एंड स्टार्ट सिंगिंग अगेन, बट वी लेट हर कम्प्लीटली रिकवर एंड हील एंड बी ऑन हर ओन अंटिल देन, एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स हाल ही में हुआ था, और बहुत सारे अवार्डीज के हमें जो नाम पता चले वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. मैं उसमें तो नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन बस दिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि कितना वक्त निकल चुका है यार. इतना वक्त निकल चुका है कि मुझे अब अगले सेगमेंट पर जाना चाहिए, क्योंकि 11 से 12 के बीच आई गेट दिस समथिंग रिलेटेबल टू यू, टू मी, टू ऑल ऑफ अस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. और उसी के चलते मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जिंदगी ना बड़ी भागती दौड़ती है, और उसमें अगर थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम चाहिए जैसे इस गाने में था, तो आपके लिए ओशो यूनिवर्सल का एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है. जरूर याद रखें, ज्वाइन द ओशो मेडिकल, सॉरी लुक एट मी, ओशो मेडिटेशन रिट्रीट लेडीज एंड जेंटलमैन, July 31st से लेकर August 2nd तक यहाँ आपके लिए है एट ओशो केवल्य धाम इन डेनिसन. और आप जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो कुछ कमाल की चीज़ें हैं. यू नो दैट डीप साइलेंस, दैट इनर ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग, वो जो एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं ना, ये सारा कुछ आपको स्वामी प्रेम मैत्रेय के गाइडेंस में मिलेगा. म्यूजिक, सेलिब्रेशन, ऑल ऑफ दैट, वेदर यू आर अ बिगनर और एन एक्सपीरियंस मेडिटेटर, इट डजेंट मैटर, हर कोई वेलकम है और हर कोई के लिए बहुत मीनिंगफुल होने वाला है ये इवेंट. लिमिटेड सीट्स हैं, तो ज़रूर रजिस्टर करें. और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 214-395-6757 पे. मैं ये नंबर दोहराने वाली हूँ, एंड इफ़ यू नीड दिस नंबर अगेन यू कैन आस्क एनी ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द माइक, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इट एनी टाइम. 214-395-6757 it is the number to register right away. All right, and your journey to inner peace begins right then. Once again, thank you very much for tuning in. एक request जो थोड़ी देर पहले आया था, thank you for your patience पंकज साहब, let's get you this गाना. उन्होंने कहा कि भाई AR रहमान में वो बात थी कि हर सिंगर का ना बेस्ट वो निकाल सकते थे. He has that capability and I totally agree. यहाँ पे there are so many singers, Vaishali and then Mahalakshmi, Shoma and of course Richa Sharma in this one song. और क्या अमेजिंग कैमरा ट्री बिटवीन ऑल ऑफ देम.

नदीम श्रवण का म्यूजिक था इस गाने के लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द 90s दैट वी गॉट. और समीर साहब को इस गाने के लिए अवार्ड मिला था एट द फिल्म फेयर्स. और अलका याग्निक को एक्चुअली मिला था बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर एट द

यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. ये वो सेगमेंट होता है जहाँ पे हम दिल से दिल के तार जोड़ते हैं, वो चाहे बूमर्स हो, जेन एक्स हो, मिलेनियल हो या जेन जी के बाद जेन अल्फा हो. हम सभी को इस प्लेटफॉर्म में एक साथ लेकर चलते हैं. सेइंग दैट कि ये जो कॉन्वर्सेशन है इसका आप पूरी तरह से हिस्सा बन सकते हैं. एंड दिस इज दैट टाइम ऑफ माई शो जहाँ पर ऐसी ही कुछ बातचीत शुरू करेंगे. दिस इज नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस लेडीज एंड जेंटलमैन. सो विल बिगिन इन जस्ट बिट. उसके पहले ना ये एक रिक्वेस्ट आई है वो मैं लगा देती हूँ और उसके साथ एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि हमारे वो लिसनर जो हैं वो यू नो फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लान बनाया है, यू नो अपने काम से निकल के फ्रेंड्स के साथ थर्सडे को मिलने जाना इज टोटली द वाइब दैट दे आर प्रॉब्ली क्रिएटिंग टुगेदर फॉर अ गुड वीकेंड. फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत मस्त जाने वाला है. अगर थर्सडे से ही आपके सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं तो लंच एंड डिनर पार्टीज अगर शुरू हो गए हैं तो क्या बात है. यू आर इन टोटल मूड और इस मूड को सही रास्ते पे मैं लेकर जाना चाहती हूँ. क्या पता उनके लिए ये यूजफुल हो या उनके फ्रेंड्स के लिए जिनसे वो मिलने जा रहे हैं. इफ़ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US permanent residency, the law office of Seema Mehta is the rasta for you to go, the path that you should choose. Kyunki attorney Seema Mehta hai jinke paas experience team hai jo specialize karte hain exclusively immigration law mein, including EB5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. Is इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आई विल से ड्रॉप एन ईमेल इनटू info@seemamehtalawfirm.com. वंस अगेन इट्स seemamehtalawfirm.com. लेट्स गेट इनटू दिस जोन ऑफ प्लेइंग दिस भाग मिल्खा भाग सॉन्ग. एंड आई हैव टू से सुधा दैट आई लव दिस सॉन्ग एज वेल. एंजॉय योर टाइम विथ योर फ्रेंड्स.

शादीशुदा मजा आ गया यार ये गाना सुन के. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल रिक्वेस्ट राइट देयर. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. हमारी गपशप अब इसके लिए तैयार हो जाएं क्योंकि यू हैव टू कम ऑन बोर्ड नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें करते हैं विच विल टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन और कुछ नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करेंगे, उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो मिलेनियल्स तो क्या मतलब जेन एक्स बूमर सब कनेक्ट करेंगे उसके साथ, जो नहीं करेंगे वो भी इंजॉय करेंगे, इतना मैं आपको बता सकती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. गपशप गली में अभी वो गली पकड़ने वाले हैं जहाँ पे बचपन याद आ जाएगा.

0: मुसाफिर ही तो हैं हम जो कि अभी तलाश में निकले हैं लंच चॉइसेस के लिए. तो मेरे पास एक सीधा सा रास्ता है कि आप तंदूरी फ्लेम जाओ यार, वहाँ पे आपको आपका नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स भी मिलेगा और वो होम स्टाइल पंच भी मिलेगा, है ना. नेकी और पूछ पूछ शायद इसी को बोलते हैं. इसीलिए आप तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो कि गार्लिन में है उसके आसपास है तो बनता है, अगर दूर भी है तो भी बनता है, क्योंकि भाई उनके स्मोकी तंदूरी कबाब और उनके जो मखमली करीज हैं वो आपको बहुत बहुत बढ़िया लगेंगे. और बाहर की गर्मी क्यों, खाने की गर्मी को इंजॉय करें आप विथ एब्सोल्यूट चिल्ड एटमोसफेयर एंड ऑफकोर्स द हॉटेस्ट ऑफ द फूड दैट यू कैन गेट एट तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, Tandoori Flame restaurant, which is in Garland. Once again, I want to make sure that it is cemented in your mind right now. This is Gapshap Gali with Meetu. हमारी गपशप जो है वो कुछ बचपन के रास्ते पकड़ने वाली है. और अगर आप ऑन बोर्ड आना चाहते हैं तो बस स्टूडियो का नंबर याद रखें 972-235-5555. एक छोटे से ब्रेक पर जाने वाले हैं, लेकिन बने रहें, चिपक के सुनते रहें फनेश रेडियो 104.9 FM.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए.
8: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
3: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL वर्ल्ड वाइड को कॉल कर,
12: documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
13: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
14: Tracks that put you on the right track.

This part of my show is brought to you by AG FinTags. Very proud to tell you all that they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. तो अगर आप business owner हैं, चाहे वो individual है आप या एक startup है आपका या आपका established business है, in any case you can get in touch with them and get all the financial help that you are seeking. Financial solutions इनके बिल्कुल tailored made होते हैं आपके unique needs के हिसाब से, और इसीलिए चाहे वो बुक कीपिंग हो या पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में, रिकंसिलिएशंस के बारे में हो या फिर प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग के बारे में, टैक्स कंप्लायंस के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में या बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में, यू कैन डेफिनेटली गेट ऑल द हेल्प एंड गेट योर फाइनेंसेस एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. दिस इज एजी फिनटैक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इट इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर श्योर. तो अब जो बाकी रहता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओ और सारी डिटेल्स लो, एंड देन कॉल मिस्टर अनिल गांधी एंड हिज टीम टू यू नो गेट स्टार्टेड. 4699429888, दैट्स द नंबर. agfintax.com इज दैट वेबसाइट. Incredible team of Mr. Anil Granthi of AG FinTax that you must get in touch with. फिर से दोहराऊं जो हर रोज कहती हूँ, मैं दोहराई देती हूँ. चलिए, क्या पता आज पहली बार मेरे शो को कोई सुन रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई कॉल ज़रूर करें. कॉल से एक्चुअली ना वो कनेक्शन बनता है. वेबसाइट पर जाके केवल जानकारी मिलती है, लेकिन कॉल करने से, आवाज़ सुनने से, बात करने से उनकी टीम के साथ, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि यू नो व्हाट दे आर ऑफरिंग यू एंड हाउ दे कैन हेल्प यू, एंड यू गेट दैट वाइब. यार ये वाइब इज ए वर्ड जो कि बड़ा जेंजी वर्ड है, लेकिन ट्रूली इट इज़ ऑल अबाउट द वाइब, लेडीज एंड जेंटलमैन. वंस अगेन इट इज़ अबाउट द वाइब दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग, द नॉस्टैल्जिया वाइब that we are going to create here for all of you. ये है Nostalgia Express. तो बने रहें, क्योंकि कुछ बेहतरीन कुछ बचपन की millennials के लिए बातें जो होंगी उसमें I am sure the Gen Z's will have a terrific time in just finding out what we used to do. Alright, this is Gapshap Gali with me too. तो यहाँ पे हमारा ये जो Nostalgia Express है, तो obviously it is to bring only the songs from the yesteryears that we have so very much enjoyed.

जी हाँ, वही पर्दा जो हटाने वाली हूँ और वो है यादों का पर्दा जो मैं उठाने वाली हूँ आप लोगों के लिए. आज हम बात करने वाले हैं, यू नो व्हाट, एक ऐसी जगह की जो हमारे बचपन की का एक असली किंगडम हुआ करता था हमारे दिमाग में. लेट्स टॉक अबाउट द गुड ओल्ड छत, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेरेस, द रूफ टॉप, विच वॉज एंड इज द इमोशनल हार्ट ऑफ मिलियंस इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. जहाँ से भी आप हो, आप जानते हैं छत की क्या वैल्यू होती थी हमारे हमारे घरों में, हमारे दिलों में. एक्चुअली वो गर्मी की रातें जब एसी या कूलर्स फेल कर जाते हैं ना, तब पूरी फैमिली जो वो टेरेस पे जाके, वो बिस्तर बिछा के और फिर वो मच्छरदानी भी लगा के, उसके बाद जो वो लेटने का मज़ा होता था ना, हम तो भाई ये भी करते थे कि पानी के कुछ छींटे भी डाल देते थे ताकि वो एक ठंडा वाला फील आए, वो भी हमने मज़े लिए हैं. एंड जस्ट टू डू द मच्छरदानी टेरेस में, वो एक अपने आप में टास्क होता था कि कहाँ से कौन से कॉर्नर के साथ आप वो रस्सी को करोगे, जोड़ोगे. वो चीज़ें आज भी इंडिया में हैं, बस फर्क ये है कि हम इंडिया में नहीं हैं या पाकिस्तान में नहीं हैं. एंड देयर फॉर यू नो हम वो सारी चीज़ें मिस करते हैं, और हम मिस करते हैं इसीलिए अगली जेनरेशन भी मिस करती है. एंड दैट इज़ द रीज़न, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थॉट आई विल पिक अप दिस वन टॉपिक दैट इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स, और वो है छत, लेडीज एंड जेंटलमैन. हाउ अबाउट दैट? 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो.

मॉडर्न कैंपिंग नहीं, बट हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ छत पे बिस्तर लगा के सोना, वो उसका कुछ अलग ही मज़ा था यार। छत के बारे में बात कर रही हूँ, आप भी आई एम श्योर यू हैव योर ओन स्टोरीज कि छत पे क्या क्या नहीं होता था। छत पे अपनी एक पूरी दुनिया होती थी। छत पे मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे खेलने खेलने गेम्स वगैरह का भी सिलसिला वहाँ चलता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और मेरी फ्रेंड ना एयर होस्टेस भी खेले हम। मतलब उसने एक कॉर्नर पकड़ लिया और मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, वो उसका प्लेन, ये मेरा प्लेन, एंड वी आर द एयर होस्टेसेस ऑफ आर प्लेन्स। और हम 2 घंटे 3 घंटे बिना एक दूसरे से बात करते हुए इमेजिनरी अपने पैसेंजर्स को सर्व करते हुए और कुछ अनाउंसमेंट्स करते हुए हमने पूरी 2-3 घंटे निकाल दिए हैं अपनी जिंदगी के उस दिन के। वी हैव डन इट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स देयर। हमारे एक वाटर टैंक जो होता था उस पर ना स्लैब्स होते थे, स्टोन स्लैब्स होते थे, जिसपे शाम को जब वेदर अच्छा होता था उस पर चढ़ के बैठ के गपियाने में जो मज़ा आता था ना, सीरियसली आई हैव सच फॉन्ड मेमोरीज ऑफ छत, आई कांट टेल यू। उसके अलावा वो जो छत जो बातें होती थी, या जो छत टापना जिसे कहते हैं ना, एक छत से दूसरी छत जाना, वो सारी चीज़ें ना मतलब आपकी आपकी ग्लोरी को ऐड करते थे कि यार मैं छत टपक के एक घर से दूसरे घर जाना, वो अपने आप में एक बड़ा, आज के दिनों में हमारे बच्चे करें तो हम कहेंगे यार मत करो, लेकिन हमने भी किया है जब हमारे पेरेंट्स वर लुकिंग ऑन दी अदर साइड टू दी अदर साइड। तो यस, ऑल दोज थिंग्स राइट फ्रॉम वो अचार पापड़ बनने से लेकर पतंग उड़ाने तक, कितनी सारी यादें हमारी छत के साथ जुड़ी हैं जो आज के बच्चे अगर सुनेंगे तो उनको सुन के मज़ा आएगा। आई कैन अश्योर यू दैट समथिंग दैट वी रियली रियली मिस डूइंग हियर, डोंट यू थिंक सो? यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू। कुछ छत यानी टेरेस की बातें जो हम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल दिस इज नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: बस एक मेमोरी को साफ मत कीजिएगा और वो है छतों की मेमोरी. वो घर ना थे, घरानी थे, छतों के वो जमाने थे. छतों से जोड़कर छत जब मोहल्ले बातें किया करते थे. वो घर ना थे, घरानी थे, छतों के वो जमाने थे. और वो क्या जमाने थे लेडीज एंड जेंटलमैन. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई हम जब ऐसे समर्स में पर्टिकुलरली जब हम पूरा अपना बिस्तरा लेके ऊपर चले जाया करते थे और सोया करते थे, क्या मज़ा आता था. इट वॉज आर ओरिजिनल कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग एंड आर प्रीमियम एंटरटेनमेंट बिफोर स्क्रीन्स टुक ओवर, राइट. मिलेनियल्स और जेनिक्स के लिए ये बचपन के सबसे प्यारे कोर मेमोरीज हैं प्रॉबेबली. और गेस व्हाट, जेंजी ने इस एनालॉग मैजिक को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अडॉप्ट किया. दे आर द वंस लीडिंग द विंटेज एस्थेटिक वेव, ब्रिंगिंग बैक वाइनल रिकॉर्ड्स, फिल्म कैमराज एंड ट्रू स्टार गेजिंग अप्रिसिएशन. उन्होंने टेक्नोलॉजी के बीच रहकर उस पुराने चार्म को वापस लाने की ये जो एक जिद पकड़ ली है, जहाँ पर दे वॉन्ट टू कट ऑफ फ्रॉम स्क्रीन्स और स्टार गेजिंग वो करना चाहते हैं. टेलीस्कोप का सेल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंजी. सो लेट्स गिव देम क्रेडिट लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस ज़माने में भी वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं जिनको हमने अपनी खुली आँखों से इंजॉय किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है. जेन जी इज ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड मच मोर. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू. कंटिन्यू लिसनिंग.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: If I marry, then I'll wear Kareena's designer lehenga. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy.
15: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
20: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
21: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
22: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
23: Tracks that put you on the right track.

0: सैफ अली खान को और कौन सी फिल्म में या वेब सीरीज में आपने एक सरदार के किरदार में देखा है? अगर आप मुझे बता सकें मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद ये याद करी थी. ही वॉज लुकिंग सो नाइस इन द पगड़ी. आई थॉट आई विल आस्क यू ऑल. 9722355555 एंड दिस इज़ फॉर डी वाइब रेस्टोरेंट दैट यू ऑल आर प्लेइंग फॉर. यहाँ से आपको बढ़िया सी एक डिश बिल्कुल फ्री मिलने वाली है कि अगर आपने मुझे बताया सही जवाब इसका. तो यस, वंस अगेन डी वाइब जो कि है फूडिस्तान के अंदर, फूडिस्तान है ओबरी में, और फूडिस्तान के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. आपके पास ऑप्शन है फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, द ऑप्शन इज ऑफ गेटिंग फ्रेश प्रोड्यूस, हलाल मीट, इंडियन ग्रोसरीज, बेकरी आइटम्स लाइक पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, और साथ ही साथ डी वाइब रेस्टोरेंट जहाँ से आपको किसी एक को मिलने वाला है दिस फ्री डिश. योर लाइव ऑन एयर, बताइए.
1: हाय, इट
0: हाय,
1: इज सेक्रेट गेम.
0: इट इज सीक्रेट गेम्स. आपको कैरेक्टर का नाम याद है बाय एनी चांस?
1: आई डोंट रिमेम्बर
0: नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मेरे सामने तो मैंने गूगल का खोल के रखा हुआ है ना, तो मुझे पता चल गया है कि भाई इंस्पेक्टर सरताज सिंह. एंड इट इज दैट,
1: बट
0: यस, सीक्रेट गेम्स वॉज सच एन अमेजिंग वेब सीरीज. के सीजन 1 भी आया, 2 भी आया 2018 और 19 के बीच में, एंड वी ऑल थरली इंजॉयड. वेल, थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर नेम?
1: नम्रता.
0: नम्रता, आपको मिलता है डी वाइब रेस्टोरेंट की तरफ से एक फ्री डिश. प्लीज होल्ड द लाइन एंड आई टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर. ऑल राइट,
1: ओके, थैंक
0: थैंक
1: यू.
0: यू सो मच. देर हैव बीन सो मेनी अदर एक्टर्स जिन्होंने पगड़ी बांधी है अपने कैरेक्टर के लिए, वो चाहे अजय देवगन हो या विकी कौशल या सनी देओल. सब कमाल के लगे हैं हमारे हीरोज. एंड अक्षय कुमार ऑल्सो, लेट्स नॉट फॉरगेट अक्षय कुमार, राइट? लेकिन सैफ अली की बात की थी तो एक और सैफ अली का अच्छा सा गाना याद आ रहा है तो बारिश की बूंदों के साथ, ये गाना जो बाहर जिसका आसार बिल्कुल नहीं है, लेकिन आई थॉट इट विल ब्रिंग दैट मच नीडेड कूल ऑन एयर.

दैट वॉज सैफ अली खान इन दैट सॉन्ग लेडीज एंड, जहाँ पर उन्होंने एक पगड़ी बांधी हुई है और सरदार जो वीर सिंह का किरदार उन्होंने निभाया है, यंग वीर सिंह का किरदार उन्होंने निभाया है, एंड द ओल्डर वीर सिंह इज ऋषि कपूर हिमसेल्फ. और ये मेरे लिए एक सवाल का एक रास्ता बनता है, और वो सवाल आप लोगों से ये है कि सैफ अली खान ने एक और कॉन्टेंट में उन्होंने सरदार का किरदार निभाया है. कैन यू टेल मी वॉट exactly am I looking for? What's the name of that movie, the web series? It can be anything because I don't want to give it away. So you have to tell me that once again.

ये आखिरी सेगमेंट हमारे और आपके लिए वेरी स्पेशली विच इज कॉल्ड ताजा एंड न्यू. इट इज टू डू विद एवरीथिंग दैट इज न्यू इन द मार्केट, जो इसी महीने रिलीज हुआ है या लॉन्च हुआ है. ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं या समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग और समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल इन द टेक वर्ल्ड एंड द टॉक ऑफ द टाउन. ऐसी कोई भी चीज जो हमारे रेडार में है वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे. तो इसी के चलते क्या है ना कि फॉल बस जल्दी आ जाएगा, समर देखते ही देखते निकल जाएगा और फिर फॉल आ जाएगा. और फॉल आएगा इसका मतलब सितंबर के महीने में द 2026 आईफोन इवेंट विल बी हियर बिफोर वी नो इट. एज ऑफ नाउ हमें एक डिसेंट आइडिया है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेल थैंक्स टू टन्स ऑफ र्यूमर्स एंड लीक्स, एक फोल्डिंग आईफोन पोटेंशियली टू बी कॉल्ड आईफोन अल्ट्रा इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च आफ्टर इयर्स ऑफ र्यूमर्स अबाउट इट एंड वी लाइकली गेट अ लुक एट द आईफोन 18 लाइनअप एज वेल. ये तो आईफोन की बात हो गई. अब सैमसंग की बात करें, क्योंकि सैमसंग का समर गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट बस कल ही खत्म हुआ है और ये पूरा का पूरा फोल्डेबल्स पर ही बेस्ड था. पहले ही लीक्स की वजह से काफी कुछ चीजें लोगों को पता चल गई थी, पर नए गैलेक्सी Z Fold 8 और गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z Flip 8 और कुछ नए गैलेक्सी वॉचेस के का पहला एक ऑफिशियल लुक हमें कल मिला. इट ऑल्सो शोकेस फॉर टेक लवर्स सैमसंग्स ब्रांड न्यू AI स्मार्ट ग्लासेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए इसी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि इनकी डिजाइन काफी शानदार लग रही है. क्योंकि इस बार फ्रेम्स बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश बनाए हैं उन्होंने फॉर द AI स्मार्ट ग्लासेस बाय सैमसंग. दिस इज एब्सोल्यूटली ब्रांड न्यू फॉर ऑल ऑफ यू टू नो. सैमसंग ने टीम अप किया जेंटल मॉन्स्टर और साथ में वो भी पाकर के साथ टू मेक डिजाइनर फ्रेम्स दैट easily rivals Meta for sure. So what gives these smart glasses their smarts? Well, Google Gemini intelligence powers these glasses, letting you use voice prompts. Recipes के लिए tips चाहिए तो वो दे सकता है. Video call पर अपने सामने का view आप share कर सकते हो. And इसके अलावा जो भी camera से आपको दिख रहा है उसके notes बना सकते हो. कुल मिला के Samsung says you can prompt it anything, anytime to help you with pretty much everything, sab kuch. About the battery life, Samsung ka kehna hai ki ye glasses ek baar charge karne ke baad 9 ghante sahi chalega bilkul. That won't give you, of course, the full day coverage, correct? To unke paas jo wo battery covers hain, that carries the juice to recharge them up to 7 more times. Not bad at all. What do you think? ये glasses इस fall में launch होने वाली हैं, लेकिन price के बारे में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता. जो मुझे पता है कि ये जो अगला गाना है, it falls in the same bracket as हम तुम, एक soft, एक gentle melody के साथ from the film of

लिसन, मेरे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन मेरे जाने से पहले ना टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. 13 साल से दे हैव बीन सर्विंग आर कम्युनिटी एंड प्राउडली टेकिंग केयर ऑफ अस. टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक का एक ब्रांड न्यू नाम और एक सेकेंड लोकेशन जो कि फ्रिस्को में आया है, इसका नाम है ल्यूनॉक्सी मेडिकल. लेडीज एंड जेंटलमैन, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, ल्यूनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. तो इंसान को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपको और मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधे जाएं ल्यूनॉक्सी मेडिकल एंड फाइंड आउट हाउ दे कैन हेल्प यू. ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM to 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो माथा पच्ची ही ख़त्म. ऑल राइट, आई हैड वन मोर थिंग टू शेयर विथ यू, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं परमिट करने वाला है, कोई ना, क्योंकि मैं तो कल भी आऊँगी और ताज़ा एंड न्यू में कुछ तब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. राइट हियर ऑन फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू.

0: another trillionaire, Elon Musk's SpaceX's mega Starship rocket has a test flight planned tonight. Last week, ये rocket का कुछ last minute कुछ problem हो गया था. Lift off में last minute cancellation हुआ for its 13th flight, which is at 407 feet tall with 33 main engines. It is the world's biggest and most powerful rocket so far. And the company lost about $100 billion in market value afterwards. अब ये जो है अब देखते हैं आज कैसा होगा. विंडो है बिटवीन 5:45 पीएम टू 7:15 पीएम. इट इज स्टार बेस टेक्सस, दैट्स द लॉन्च साइट लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
5: प्रीतेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आज सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 12:37 और मेरा और आपका साथ होने वाला है अगले 2 घंटे तक। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफी स्पेशल है, मतलब मुझे काफी पसंद है। हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में, और सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद की तारीफें करने लगिए। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद को समझिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को फॉरगिव कर दीजिए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि खुद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी ना बनाएं, अपने आप को नो प्रायोरिटाइज कीजिए लाइफ में। और हम सब अपनी लाइफ में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, बॉसेस हो, लेकिन हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि क्या मैं खुश हूं, मैं अपने लिए क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं। और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप खुद के लिए क्या करते हैं, अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, अपने खुद को ट्रीट देते हैं, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं क्या, या फिर हमेशा दूसरों के लिए ही बिजी रहते हैं। बताइए मुझे बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। और सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता कि आप अगर खुद के बारे में सोच रहे हो तो आप सेल्फिश हो गए हो। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप दूसरों का ख्याल रखो लेकिन अपना ख्याल रखना ना भूलो। आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, वेरी गुड, बट ये नहीं कि आप अपने साथ जो है डिसरिस्पेक्ट अगर हो रहा है तो उसको चुपचाप सह लिया। आप अगर दूसरों को फॉरगिव कर सकते हो, दूसरों को मोटिवेट करते रहते हो, तो खुद को भी फॉरगिव करना सीखो, खुद को भी मोटिवेट करो। आप अपने फ्रेंड से हमेशा कहते होंगे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो अपना ट्राई किया ना। लेकिन जब बात खुद की आती है, जब हम खुद किसी चीज में फेल हो जाते हैं, तो वो चीज हम खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते। सो दैट इज वेयर एग्जैक्टली सेल्फ लव शुड कम इन पिक्चर। हम अपने आप को कंपेयर करना बंद करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी हमें आशा जी का फोन आया था और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई कि व्हाट शी डज फॉर सेल्फ लव इज कि जब वो इंडिया में थी तो उनको जब पहली सैलरी मिलती थी और हर मंथ जब सैलरी मिलती थी तो वो खुद के लिए फ्लावर्स खरीदती थी। इज इट इज ब्यूटिफुल एंड शी स्टिल डज इट। अभी वो यूएस में आ गई है एंड इट वॉज वेरी लवली टू नो दिस। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि भाई आप लोग क्या करते हो सेल्फ लव के लिए। लेट मी नो बाई कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव के बारे में, और सेल्फ लव का ये मतलब नहीं कि हमेशा एक्सपेंसिव स्पा डे हो या फिर कोई शॉपिंग स्प्री हो, ऐसा नहीं होता। सेल्फ लव के छोटे छोटे भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अपने लिए अपनी फेवरेट कॉफी बना लेना, फोन को 30 मिनट के लिए साइड रख लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, किसी इनविटेशन को पोलाइटली नो बोल देना अगर आपको वहां जाने का मन नहीं है तो, अपने लिए ना अपना टाइम निकालना, मतलब क्वाइट टाइम या माई टाइम जैसा बोलते हैं उसको, वो निकालना, अपने लिए अपना फेवरेट सॉन्ग बजा लेना, अपने लिए फेवरेट ऑर्डर फूड ऑर्डर कर लेना, या फिर अपने लिए कुछ खरीदना विदाउट फीलिंग गिल्टी, अपनी फोटोज लेना, और ये सब नहीं सोचना यार कि you know, मैं तब ये करूँगा या करूँगी जब मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं ये ड्रेस तब पहनूंगा या पहनूंगी जब मैं फिट हो जाऊँगी, या फिर ये फोटोज मैं तब लूँगी जब मैं परफेक्ट लगूंगा या लगूंगी। ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए कोई परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और खुद से प्यार करना सीखिए। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, और इसके साथ ये टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं। और वासिम जी की एक स्वीट सी रिक्वेस्ट आई है फॉर हिज वाइफ फरीदा की एक कुछ अच्छा सा सॉन्ग हो जाए, तो द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर वासिम एंड फरीदा जी। आई होप यू लाइक इट।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
6: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी.
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
7: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Bindas Bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
12: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
13: Location upgraded, now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: क्यों?
13: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
14: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
13: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
15: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटी and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2733. 7771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

साहिबा, अगर आपको मेरा इतना ज्यादा ख्याल आता है तो मैं आ चुकी हूँ भाई। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। वक्त हो गया है हमारे गिव अवे राउंड का, तो तैयार हो जाइए। आज है एक स्पेशल शख्स का बर्थडे, हिमेश रेशमिया जी का बर्थडे है आज। और वो काफी फेमस हैं अपने सॉन्ग्स के लिए, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत सारे उन्होंने इंडियन आइडल्स और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको उन्होंने होस्ट किया है, और अपने स्टाइल, अपने कैप वगैरह, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी पॉपुलर हैं। और क्योंकि उनका बर्थडे है तो सवाल भी उनके अराउंड हम रखेंगे। बस इतना बता देती हूँ कि अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है, और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड बाई आंसरिंग अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, और अगर आपने फन पिज्जा किचन का ये जो गिव अवे है वो जीत लिया है इन एनी अदर शो, तो प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि हम सबको मौका देना चाहते हैं फन पिज्जा के अमेजिंग स्लाइसेस को एंजॉय करने का। सवाल ये है कि जो हिमेश रेशमिया है उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था एक बॉलीवुड मूवी के साथ, और आपको उस मूवी का नाम बताना है मुझे। ओके, कॉल करना है मुझे एट 972-235-5555।

हमें हमारा विनर मिल चुका है और आज के जो लकी विनर हैं वो हैं विशाख पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड और एक अमेजिंग ऑफर भी है फन पिज्जा किचन पे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना हमारा दिल बहुत बड़ा है। अगर आप ये $10 नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास एक और मौका है कि आप 10% ऑफ करवा सकते हैं अपने बिल में, या फिर एक फ्री गार्लिक ब्रेड मिल सकता है आपको। आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है कि आपको अपने फ्रेंड्स को एक साथ लाना है और उनको ना उनके साथ एक सेल्फी खींचनी है आप सबको एक साथ, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, टैग करना है फन पिज्जा किचन को और उसको दिखाते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, है ना सिंपल। बट ये ऑफर जो है ना वो सिर्फ August 3rd तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी इस मौके का लुत्फ उठाए, बेनिफिट उठाए। और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो देन यू शुड गो ऑन देयर वेबसाइट विच इज fun pizza kitchen.com।

देखिए, अगर आपका ऐसा सपना है कि आपका एक अपना घर हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो आप ड्रीम होम मॉर्गेज को जरूर संपर्क करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को हेल्प किया है अपने होम ओनरशिप के सपने को रियलिटी में बदलने के लिए। और जो इनकी टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, 1998 से ये लोगों की मदद करते आए हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते आए हैं, इसलिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। एंड इनका जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, और इनके पास सारे यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में इनके पास लाइसेंस भी है। बताओ, मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आपको एक घर खरीदने के लिए कोई एडवाइस वगैरह चाहिए, कोई चाहिए जो आपको ये फैसिलिटेट कर दे, तो देन दे आर द राइट ऑप्शन फॉर यू। और ये आपको राइट लोन अगर आपको चाहिए तो उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं, कि आपको कौन सा रीफिनेंसिंग ऑप्शन चाहिए तो ये मदद करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके नीड्स, आपके ज़रूरतों के अकॉर्डिंग है। चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, या फिर रीफिनेंस करना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है एट ड्रीम होम मॉर्गेज। आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज़ dreamhomemortgage.com, जहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। और हमको कॉल आया था कविता का, उन्होंने बोला था कि खिलाड़ी 786 मूवी से एक और गाना प्ले करने के लिए। तो कविता, द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट।

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
1: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
0: Visit www.senadainc.com today.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभाल लेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

आप सुन रहे हैं फनेशन रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और अभी हम जो गाना सुन रहे थे, एक नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तो भाई ढूंढ लो कि किसने आपकी नींद चुरा ली है, क्योंकि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आप कंसिस्टेंटली पुअर स्लीप के शिकार है, तो आपका ओवरऑल हेल्थ काफ़ी इम्पैक्ट होगा। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, मूड खराब हो रहता है नींद इनकम्प्लीट रहने पे, और इम्यून फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो प्लीज़ अपने नींद का ध्यान रखिए, क्योंकि गुड स्लीप ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये था आज का हेल्थ टिप ऑफ द डे बाय पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर। और ध्यान रखें अगेन, और अच्छे गाने का तो सिलसिला जारी ही है एट फन एशिया। कीप एंजॉइंग द शो। मेरा और आपका साथ अभी एक घंटे और है।

इस गाने में एक लाइन है कि अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, लेकिन पहले अंगूठी खरीद तो लो। अगर आप अंगूठी वगैरह खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है। आपको जाना है श्री कृष्ण ज्वेलर्स के पास, जो कि लोकेटेड है एट मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में। और यहाँ पे ना ज्वेलरी सिर्फ एक एसेसरी नहीं बिल्कुल, लेकिन एक झलक होती है ट्रेडिशन की, एलिगेंस की और टाइमलेस ब्यूटी की। फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइन टू स्पार्कलिंग डायमंड्स और फ्रॉम इंटीग्रेट कुंदन, तो स्टनिंग पोल की कलेक्शन, यहाँ आपको हर वो पीस मिल जाएगा जो कि आपके स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बना देगा। तो देर किस बात की है भाई, अभी जाइए श्री कृष्ण ज्वेलर्स और उनकी कलेक्शन तो चेक कीजिए।

0: फॉर मोर सच प्रभुदेवा सॉन्ग्स डू विजिट टेक्सस ट्रस्ट सी यू थिएटर ग्रैंड प्रेरी ऑगस्ट 1st को सैटरडे को प्रभुदेवा लाइव आ रहे हैं और उनके साथ आ रही है उनकी अमेजिंग टीम विच इंक्लूड्स लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नॉयल, हरिनी, नताशा, सानवी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज उनके साथ आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं बुक किए हैं तो कॉल करके बुक कर लीजिए, नंबर मैं बता देती हूँ, इट्स 248-233-3828, या फिर आप फन एशिया पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे ना आपको किसी भी सोशल पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको पिंड पोस्ट मिलेंगे, उस पिंड पोस्ट पे सारी की सारी डिटेल्स होंगी कि आपको क्या करना है, कैसे बुक करना है टिकट्स। और प्रभु देवा के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ भाई, उनको इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है और मथांगी इंटरटेनमेंट ग्रुप ने ये पूरा कुछ ऑर्गेनाइज किया है, इनेबल किया है कि हम प्रभु देवा, मतलब लिटरली उनके नाम में देवा है और ऐसा लगता है कि हाँ भगवान देव मज़ा ही आ जा रहा है। जो लोग जाएंगे वहाँ पे उनको बहुत ही अमेजिंग डांस परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और ये जो मैंने कुछ कुछ नाम लिए उनमें से मैक्सिमम लोगों को आपने ABCD मूवी में भी देख रखा है, कुछ तो काफ़ी पॉपुलर फेमस इन्फ्लुएंसर डांसर्स भी हैं। टू डू विजिट, और अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके,
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
17: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग
14: और ऊपर से ये स्ट्रेस।
17: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
17: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
17: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
19: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
20: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी और ये शो है आफ्टरनून अड्डा एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म इन द इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, आपका कोई एक स्टार्टअप है या फिर आपका एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजी फिनटेक्स आपको मदद करेगा बेहतर फाइनेंशियल सोल्यूशन ऑफर करने की जो कि आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग टेलर किया गया होगा फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं जो कि आपके फाइनेंसिस को ऑर्गेनाइज रखने में, कंप्लायंट रखने में और फ्यूचर रेडी करने में मदद करते हैं। तो अगर आप उनकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए एट 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज AJFintax.com।

देखिए, आपको भी बैठे बिठाए फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है मुझे कॉल करके, और अगर आपका जवाब सही हुआ और आप हुए आज के लकी विनर तो आपको ये गिव अवे मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप तभी पार्टिसिपेट करें अगर आपने ये गिव अवे फन एशिया के किसी भी और शो में लास्ट वन मंथ में ना जीता हो। ओके, डन। चलिए क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन फिल अ रूम बट टेक्स अप नो स्पेस? वो क्या है जो पूरे रूम को भर देता है लेकिन कोई जगह नहीं लेता? बताइए मुझे, कॉल कीजिए एट 972-235-5555।

0: देखिए, मिल तो मुझे भी गया है आज का लकी विनर, और आज जीता है इस गिव अवे को श्रीकांत ने। क्वेश्चन ये था कि भाई आपको बताना था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके रूम को भर देती है लेकिन कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। और बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले, कुछ काफ़ी लॉजिकल, बहुत सारे आंसर सही भी हैं इसके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। एक्चुअल आंसर जो मैंने सोचा था वो लाइट है, कुछ लोगों ने कहा डार्कनेस, एंड आई टेक द आंसर, आई मीन इट्स राइट, लाइक इट्स लॉजिकल। एंड कुछ लोगों ने बोला एयर, विच इज़ ऑल्सो फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। बट आज तो श्रीकांत का दिन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीकांत, आपको मिलता है फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका। तो आप ज़रूर जाए, और बाकी लोग अगर आप नहीं भी जीत पाए और आप सोच रहे हो कि इस वीकेंड कहाँ जाके खाना खाएं, बाहर टाइम स्पेंड कहाँ करें, तो डू गो टू फ्लेवर लाउंज विच इज़ लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। और ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो मैं सफी के लिए बजा रही हूँ।
1: प्राणप्रिय

और अगर आप बढ़िया नहीं है ना, अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर चली जाइए, क्योंकि वहां सिर्फ 5 या 10 मिनट नहीं, पूरे के पूरे आधे घंटे मिलते हैं आपको अपने डॉक्टर के साथ, जहां पे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, पूरी अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए, क्या इश्यूज हैं, सब कुछ बताइए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छी तरीके से सुना जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा और आपको एक पेशेंट नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप, एंग्जाइटी केयर हो गया, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स अगर हैं, या फिर कोई विटामिन डिफिशियंसी की टेस्टिंग करानी है, तो भी आप वहां जाएं, सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बोला एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अगर आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है तो आपको कॉल करना है, नंबर बताने वाली हूं, लिख लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, 214-666-6259। आई विल रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 214-666-6259।

और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है और आने वाली हैं आरजे किरण, तो आप बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, जैसा कि हम कहते हैं फनी शो पे 104.9 एफएम, और आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है वीकेंड पे, तो आपको पता चल ही जाएगा जब मैं आ जाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, और अच्छे अच्छे गाने का सिलसिला जारी रहता है यार हमेशा फनी शो पे।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Bindas bolo, bolo bolo bolo, bindas bolo.
4: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. Join Banda Bindas, Mar Bindas Monday to Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
5: बेटा, 95% आए?
0: हाँ मम्मी.
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
2: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
7: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, वॉट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: What if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. Every Monday through Friday मैं आपके साथ रहती हूं 2:30 बजे से 5 बजे तक, 2:30 PM till 5 PM. And every day हमारे पास होता है एक नया फ्लेवर सुनहरी किरण पे. आज थर्सडेज हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं जी, बिकॉज द फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फूड जंक्शन, जहां हम ट्रैवल करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां एज अ टूरिस्ट जब हम जाएं तो हमें क्या खाना चाहिए, वहां के लोकल फेवरेट्स, वहां के देसी फेवरेट्स, व्हाट टू ईट, व्हाट टू एंजॉय, व्हाट शुड वी नॉट मिस एट ऑल एज अ टूरिस्ट. लेकिन ये होता है फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ. और बाकी जो थर्सडेज आते हैं वो आप ही की फरमाइश पे ये सेगमेंट ऐड किया गया है, वो 90s का बॉलीवुड, द नॉस्टैल्जिक फीलिंग ऑफ द 90s, द टाइम इन बॉलीवुड जहां वो कहते हैं ना, आई fell in love with Bollywood. This is Vo 90s ka Bollywood right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Thank you for connecting.

सोनम त्रिमूर्ति से लिया गया था ये गाना। उदित नारायण और विनोद राठौर की आवाज में सुन रहे थे आप, और इसमें नजर आए हमें जी शाहरुख खान और साथ ही साथ अनिल कपूर एज वेल एज जैकी श्रॉफ। और बहुत ही आप कह लीजिए गाना तो ये बहुत हिट हुआ, द फिल्म एक्चुअली डिड नॉट डू क्वाइट वेल और बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, हालांकि ये मेरे ख्याल सुभाष घाई प्रोडक्शन थी, लेकिन जो है कुछ गाने ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो ये मूवी में वैसे हमें संजय दत्त भी देखने को मिलने वाले थे, लेकिन कुछ उनकी लीगल बैटल्स चल रही थी जिसकी वजह से संजय दत्त हैड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस मूवी। त्रिमूर्ति फिल्म का एक छोटा सा किस्सा ये भी। 90s का कुछ आउटस्टैंडिंग म्यूजिक आपके लिए मेरे पास लाइंड अप है, बातें करेंगे कुछ 90s की मूवीज की और कुछ गिव अवेज है मेरे पास, तो विल कीप द थीम अराउंड 90s। अगर आप करते हैं 90s की मूवीज को एंजॉय, उनके गाने पसंद करते हैं, तो आप रिक्वेस्ट मतलब रिकमेंडेशंस मुझे दे सकते हैं इफ आई कैन फिट इन, आई विल डेफिनेटली डू दैट। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। एंड बिफोर आई पुट ऑन द नेक्स्ट सॉन्ग, आई मस्ट टेल यू दैट माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाई helps individuals as well as families build smarter strategies. किस तरह से जी? Portfolio management, real estate opportunities as well as alternative investments आपको बताते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, आपके लिए यू नो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं अराउंड योर गोल्स। सो चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हों या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हों या फिर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने की प्लानिंग कर रहे हों, माई टाइम इक्विटी विल वर्क विद यू एंड गाइड यू एज वेल एज डिज़ाइन the solutions regarding or around your goals. Give them a call if you have any questions. 469-702-1272. 469-702-1272 is the number, or you can visit the website which is mytimeequity.com.

टेकन फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी, ये गाना सुन रहे थे आप अक्षय कुमार और साथ ही साथ आयशा झलका और दीपक तिजोरी हमें इस फिल्म में नजर आए और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सस्पेंस मूवी थी ये. इट वॉज सच अ रिफ्रेशिंग मूवी जब ये आई थी और खिलाड़ी ही इतनी मशहूर हुई कि फिर अक्षय कुमार ने ब्रेक नहीं लगाया और बहुत सारी खिलाड़ियां बनाई, फ्रेंचाइजी बन गई पूरी. बट आई स्टिल थिंक दैट खिलाड़ी द वन एपिसोड वन, या आप कह लीजिए खिलाड़ी वन, वॉज माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं. सेलिब्रेट कीजिए इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026, हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जो जानने के लिए ज़रूरी है कि एंट्री बिल्कुल फ्री है एंड इट इज़ एन इंडोर इवेंट, कम्प्लीटली इंडोर्स है, तो गर्मी की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स आजकल के टेम्परेचर्स जो हैं वो बाहर की एक्टिविटीज़ की तो स्पेशली 2 बजे दोपहर को बिल्कुल इजाज़त नहीं देते. सो दिस इज़ इंडोर्स, कम्प्लीटली फ्री, ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड होने वाली है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी, लाइव म्यूज़िक है, शॉपिंग का बहुत सारा इंतज़ाम है आपके लिए इफ़ यू लाइक टू शॉप, एंड इनक्रेडिबल ड्रोन शो और फायरवर्क्स होंगे इन द as the grand finale. So apni friends ke saath aaiye, apni family ke saath aaiye and enjoy and be part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. This is IANT आनंद बाजार 2026. अच्छा, ये अगला गाना जो है ये बहुत ही खूबसूरत आपके लिए प्ले कर रही हूँ, फ्रॉम द मूवी खुदा गवाह. जा रहे होते हैं जी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी पीछे से कहती हैं तू ना जा मेरे बादशाह.

1992 में रिलीज हुई खुदा गवाह से सुन रहे थे आप ये गाना. श्रीदेवी ने इस मूवी में किया डबल रोल प्ले और साथ ही साथ हमें नजर आए जी अमिताभ बच्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में और नागार्जुना. लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी कि इनिशियली संजय दत्त को नागार्जुना जी के रोल के लिए हायर किया गया था या साइन किया गया था एंड शायद एक दो सीन संजय दत्त ने शूट कर भी लिए हुए थे लेकिन कुछ उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स और कुछ ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि संजय दत्त हैड टू ड्रॉप आउट of the movie and that is why when Nagarjuna was pulled in. और आपको बताएं जी कि श्रीदेवी ने रिफ्यूज कर दिया था सेकेंडरी या फिर ये जो स्टैंडर्ड रोमांटिक लीड जो बेटी बनती हैं उनकी वो रोल प्ले करने से. लेकिन एक ही कंडीशन पे उन्होंने ये रोल किया कि जो है उनको पहले ये सेकेंडरी रोल ऑर्डर किया गया था ऑफर किया गया था जो वो बेटी का रोल होता है पर उन्होंने एक कंडीशन पे इसको करने के लिए हामी भरी कि मुझे माँ और बेटी दोनों का रोल करने के लिए दिया जाए. दैट इज हाउ दिस मूवी द डबल रोल काइंड ऑफ वॉज एडेड इन द मूवी खुदा गवाह. सो खुदा गवाह के बारे में एक छोटा सा किस्सा ये भी. 90s का दौर 90s का बॉलीवुड आपके लिए लेकर आई हूँ एवरी थर्सडे एक्सेप्ट द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हम 90s का बॉलीवुड करते हैं ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. और अब ये खूबसूरत गाना कुमार शानू की आवाज़ में. 90s का दौर हो और कुमार शानू साहब की बात ना हो दैट इज नॉट पॉसिबल.

0: और इसी के साथ वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, आई हैव लॉट्स ऑफ म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Heere moti, main na chahu.
6: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी, ब्रिलियंस, सेलिब्रेशन. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
12: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM to 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार। सिर्फ फन एशिया रेडियो पर।
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Suneri Kiran Miss. सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड. और ये जो हरे दुपट्टे वाली हैं, ये थी चांदनी, जो के सलमान खान जिन्हें पुकार रहे हैं कि हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली. फिल्म थी सनम बेवफा. 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई. सलमान खान और परान इसमें ओरिजिनल स्टारकास्ट में नजर आए और साथ ही साथ चांदनी वॉज द हीरोइन ऑफ द मूवी. अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक्ट्रेस चांदनी जो है उन्हें इस मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया था. चांदनी ने इस मूवी का एड देखा एक न्यूज़पेपर में. वंस अपॉन अ टाइम मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था और उसके अंदर चांदनी का ये कहना था कि न्यूज़पेपर में एड आया था कि फोटोज भेजिए और वाइटल स्टेटिस्टिक्स भेजिए टू बी सलमान खान नेक्स्ट हीरोइन. एंड दैट इज वेन चांदनी का ये कहना था कि मैंने वहां अपनी फोटो वो भेजी एंड देन इट वॉज एक्चुअली अ वैलिड वन. मुझे कॉल आई और फिर मैं गई और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया इस रोल के लिए. ऑल्दो आपको बताते चलें कि द फिल्म वॉज इनिशियली लॉन्च्ड विद अनदर एक्ट्रेस, रुखसार नाम था उनका, लेकिन फिर चांदनी को ये लीड रोल मिल गया. मैंने दोबारा बहुत कम चांदनी को देखा, लेकिन दिस फिल्म वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड मूवीज जिसमें सलमान खान और चांदनी के गाने, रोमांस बहुत ज्यादा पसंद किया गया. दैट वॉज सनम बेवफा फॉर यू. आगे बढ़ रहे हैं जी. 90s के दौर के चंद आउटस्टैंडिंग सिंगर्स, जो आप कह लीजिए 90s के एरा को बहुत सारे लोगों ने गाना गाया, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो आगे चले और आज तक जो है अब तक उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, उनके गानों को एंजॉय किया जाता है. दे आर द ट्रू लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड. जैसे मतलब 70s और 80s के एराज में तो लेजेंड्स बने, लेकिन 90s ने भी हमें कुछ कम लेजेंड्स नहीं दिए, जिनमें नाम आता है कुमार शानू का, साथ ही साथ उदित नारायण, सोनू निगम और उसके साथ अभिजीत भट्टाचार्य ने भी बहुत खूबसूरत गाने दिए 90s के दौर में, हरिहरन साहब. और फीमेल सिंगर्स की अगर बात की जाए तो अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर साहिबा तो खैर जमाने से चल रही थी, 90s में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत हमें गाने दिए. आशा भोसले जी ने भी, अनुराधा पौडवाल और साथ ही साथ साधना सरगम. ये चंद ऐसे नाम हैं 90s के जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में फरामोश नहीं किया जा सकता. सो इन्हीं नामों की बेसिस पे अब आपको थोड़े से गाने सुनाने शुरू करूंगी. कुमार सानू की बात हुई तो लेट्स लिसन टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ 90s, संग बाय दिस लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू.

टेकन फ्रॉम द मूवी 1942 अ लव स्टोरी. और इस गाने के लिए कुमार सानू ने जीता 1995 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर ऑफ कोर्स एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. कुछ ऐसे ही 90s के आउटस्टैंडिंग सिंगर्स के गाने आपके लिए प्रेजेंट करूंगी जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफें भी दिलाई और कुछ अवार्ड्स भी जिताए. लेकिन उससे पहले आपको बता दी चलूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा ग्रैंड करना चाहते हैं, कोई इवेंट आ रहा है आपका, जैसे कि एंगेजमेंट या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है कोई आपकी, और यू जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग ब्यूटिफुल टू योर लव्ड वन, और अगर यू आर अ ब्यूटिफुल लेडी एंड यू वॉन्ट टू ट्रीट योर सेल्फ, then Malabar Gold and Diamonds is the place for you to go. जी हाँ जी, this is located in on Preston Road in Frisco. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मिलेंगे stunning diamond jewelry जो कि elegant है, timeless है, and it is really crafted to shine. दिल लगता है उनके showroom में जाके, उनकी catalog को देख के, उनके जेवर को जो वो बनाते हैं उसे देख के. Beautiful rings, earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles. हर चीज़ आपको मिलेगी hero से related. And of course, other things as well at Malabar Gold and Diamond. So, aur saath hi saath, they promise to give you unmatched craftsmanship and brilliance. This is Malabar Gold and Diamonds for you, located in Frisco. And don't forget to download their app. Apne app store pe jaiye aur Malabar Gold and Diamonds ki app download kijiye. Mobile app download kar lijiye. This is where you will find their latest collection updates aur bahut kuch jo bhi unke specials chal rahe hote hain, sab kuch aapko is app ke through aapki fingertips pe hoga. So jaldi se log on kijiye ya apne app store pe jaiye aur Malabar Gold and Diamonds ki app download kijiye. जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो अनदर ब्यूटिफुल सिंगर ऑफ 90s जो कि जिनका कोई सानी नहीं. दिस इज उदित नारायण और इस गाने के लिए उदित नारायण ने जीता था फिल्म फेयर अवार्ड. दिस इज परदेसी परदेसी.

जी हाँ, उदित नारायण की आवाज में ये गाना विच गॉट हिम फिल्म फेयर अवार्ड, और 90s के दौर के कुमार शानू जी, उदित नारायण, दीज वर द वॉइसेज जिसपे यू नो वी ग्रू अप. आर माई मेमोरीज ऑफ बॉलीवुड इज बेस्ड ऑन दीज वॉइसेज जिनके मैं अब आपको गाने सुना रही हूँ. और भी बहुत जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे द सिंगर्स, जैसे कि अभिजीत भट्टाचार्य, साथ ही साथ सोनू निगम लेट 90s में शुरू हुए एंड देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक. इसी तरह अलका याग्निक जी, अलका याग्निक जी तो खैर 80s से रूल कर रही थी, बहुत प्यारे प्यारे मशहूर मशहूर गाने दे रही थी. उनका एक गाना जो 89 में आया जिसने 90s में उनके लिए बहुत कमाल किया, या वो फिल्म और वो गाना आज तक अलका याग्निक जी का आइकॉनिक गाना है, वो सब भी आपके लिए प्ले करूंगी. लेकिन इस वक्त लेके आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे, और गिव अवे आया है जी मिराज लाउंज की तरफ से. जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मिराज लाउंज पे आपको मिलेगा प्रीमियम हुक्कर्स, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और साथ ही साथ एक्साइटिंग डीजे नाइट्स. और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप यू लुकिंग फॉर अ लेडीज नाइट गर्ल्स, देन लेडीज नाइट इज व्हाट हैपेंस एट मिराज लाउंज एज वेल. एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हैंग आउट प्लेस, देन मिराज लाउंज इज अ प्लेस फॉर यू. दे ऑल्सो हैव कॉलेज नाइट्स. तो गाइज, जरूर चेकआउट कीजिए मिराज लाउंज को और पता कीजिए वट आर दे ऑफरिंग यू. दे आर लोकेटेड ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे. और अब आपके लिए, और दूसरा ये कि ये भी बताऊं आपको कि दे हैव हैप्पी आवर्स दैट रन थ्रू मंडे थ्रू थर्सडे, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक. तो यहां मिलेंगे आपको हुकर स्टार्टिंग एट जस्ट 24.99 एज वेल एज शॉट्स फॉर ओनली 4.99. तो अब आपके लिए गिव अवे आया है, $20 आप सेव कर सकते हैं ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50. तो $50 आप स्पेंड करेंगे तो $20 ऑफ का ये गिव अवे है आपके लिए, या आप कह लीजिए कूपन आया है आपके लिए. दो विनर्स मैं पिक करूंगी आपको. मैं अब एक 90s के बहुत मशहूर गाने की का म्यूजिक सुनाऊंगी, द स्टार्टिंग म्यूजिक, और आपको मुझे कॉल करके बताना है कि ये कौन सा गाना है और कौन सी फिल्म से लिया गया है. और बल्कि यूं कर लीजिए कि आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा गाना है और किस सिंगर ने इसे गाया. यूं ये सवाल पूछते हैं क्योंकि सिंगर्स की हम बात कर रहे हैं आज, और 90s के सिंगर की. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और पहले आप जरा शुरू का ये म्यूजिक सुन लीजिए. लेट्स बिगिन. You can start those calls coming.

ऑलराइट, आई एम गोइंग टू प्ले इट वन मोर टाइम. अगर आपसे मिस हो गया है तो फिर सुन लीजिए. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: 9722355555 पे कॉल कीजिए. इस वक्त मैं गाना बदलने लगी हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको लाइव लेती हूँ और आपसे पूछ लेते हैं. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
1: माय नेम इज सत्येन.
0: ऑल राइट सत्येन जी, सत्येन बताइए क्या गाना है ये?
1: ये है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं.
0: ठीक है जी सत्यन, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया. सुनते रहिए, मैं अभी भी अनाउंस करती हूँ. यू विल हैव टू कॉल मी बैक. ओके, सो प्लीज कनेक्टेड.
1: सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य.
0: अभिजीत, बिल्कुल सही. थैंक यू फॉर योर कॉल, कीप लिसनिंग. फाइनेंशियल रेडियो, यू लाइव इन एयर, व्हाट इज द आंसर?
2: हाय, ये मूवी का नाम है एस बॉस और सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य.
0: गाना कौन सा था?
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं.
0: बिल्कुल सही, आप अपना नाम बताइए.
2: संतोष.
0: ठीक है संतोष, आप सुनते रहिए, मैं अभी आपको विनर अनाउंस करती हूँ इन अ बिट. थैंक यू. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, गाने का नाम बताइए.
3: हाय, द सॉन्ग इज मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो.
0: ठीक है जी, सिंगर कौन है?
3: एंड द सिंगर इज अभिजीत एंड अलका याग्निक.
0: दैट इज करेक्ट, अपना नाम बताइए.
3: सबीना.
0: All right, Sabina, please सुनते रहिए. I am going to announce the winner right after this. All right, जी, last हमारे caller हैं, Fanisha Radio. अपना नाम बताइए और गाने का नाम बताइए.
4: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं.
0: जी बिल्कुल सही, अपना नाम बताइए.
4: नीलू. All right. सिंगर है अभिजीत.
0: बिल्कुल, थैंक यू नीलू फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. ऑलराइट जी, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया. आई एम गोइंग टू पिक टू विनर्स राइट नाउ एंड उसके बाद मैं विनर अनाउंस करती हूँ. बने रहिए मेरे साथ, आई स्टिल हैव सम फोन कॉल्स कमिंग. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर राइट आफ्टर दिस.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Documents या parcel भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
9: Zindagi ek rangmanch hai.
10: Aur ghar dhoondna sirf interval. Asli climax to tab hai jab closing smooth ho, paperwork clear ho aur chabi aapke haath mein ho. Parda girne se pehle First United Texas title. Hum pakka karte hain ki ghar sach mein aapka ho, har kadam aapke saath.
4: Call 972-897-1530. FirstUnitedTexasTitle.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
4: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए लेकर आई थी गिव अवे फ्रॉम मिराज लाउंज, और ये $20 ऑफ आपको मिले थे ऑन डाइन इन बिल ऑफ $50 एंड मोर. और आपसे सवाल पूछा था, आपको म्यूजिक सुनाया था शुरू में और सवाल पूछा था कि गाना तो बता दीजिए. वो तो जाहिर है, वो चला तो सबको पता लग गया, लेकिन असल था कि म्यूजिक सिंगर का, जो सिंगर हैं इसके, उनका भी नाम बताइए, क्योंकि 90s के दौर में ये सिंगर छाए हुए थे जी. और शाहरुख खान की ऑलमोस्ट सारी ही फिल्मों में आवाज़ इन्हीं की होती थी. और गाना था जी, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, और म्यूजिक और सिंगर थे अभिजीत भट्टाचार्य. एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वॉइस. आई डोंट नो वेयर इट इज लॉस्ट, बट जो कुछ भी काम हुआ उन्होंने गाया 90s के दौर में, जो हमें गाने दिए, दे वर ब्रिलियंट. आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. लाइव जिनको लिया, जिन्होंने ऑफ एयर कॉल किया, सबका. और आज के हमारे दो लकी विनर्स के नाम अनाउंस कर रही हूँ. वन इज सत्येन एंड द अदर वन इज सबीना. सत्येन एंड सबीना, कंग्रेचुलेशंस. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट यानी कि मिराज लाउंज पहुंचाने के लिए. दे आर लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. और उसके बाद आपके पास 5 to 6 days का टाइम होगा टू गो टू द रेस्टोरेंट, डाइन इन, एंड व्हेन योर बिल इज $50 यू कैन गेट $20 ऑफ. तो ये तो हुई है बात. अब इस गाने के साथ बढ़ रहे हैं हम आगे. दिस इज अ ब्यूटिफुल नंबर इन सोनू निगम. सोनू ने 90s के दौर में इस गाना तो शुरू किया, अर्ली 90s से शुरू कर दिया था, लेकिन लेट 90s वॉज द टाइम वेन द गाय ट्रूली अराइव्ड. दिस इज, एंड दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो इनका क्लेम टू फेम बना. दिस इज सतरंगी.

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms as well as accounting firms in the US. आप चाहे इंडिविजुअल हो जी या फिर आपका कोई स्टार्टअप हो या फिर एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस आप हैंडल करते हो, AG FinTechs ऑफर करते हैं आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अराउंड टेलर किए जाते हैं. बुक कीपिंग से लेकर पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब कुछ एजी फिनटेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड दे कीप यू फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं एंड दे आर कमिटेड टू योर सक्सेस. तो आप एजी फिनटेक्स को अपना पार्टनर बनाइए इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. दैट इज 4699429888 is the number, 4699429888, or you can visit the website which is agfintax.com. That is FINTAX, agfintax.com. अच्छा, हमने कुछ मेल वॉइसेस तो मेजर मेजर हमने सुनी जो 90s के दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और हर दूसरा गाना किसी ना किसी इन्हीं चार पांच लोगों ने गाया हुआ होता था. अब हम थोड़े फीमेल वॉइस की तरफ आते हैं जिन्होंने 90s के दौर में हमें कुछ आउटस्टैंडिंग गाने दिए, जिनमें दो तीन नाम तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं. सबसे पहले अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी और लता मंगेशकर मैम तो खैर बहुत अरसे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी थी 90s के दौर में. शी वॉज जस्ट यू नो गिविंग अस हिट पे हिट नंबर. लेकिन कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक वो दो नाम हैं जो हमें बहुत ज़्यादा 90s के दौर में नजर आए. और इसके साथ अनुराधा पोडवाल एंड एक दो और नाम हैं जो मैं आपको आगे गाने सुनाऊंगी. सो दिस वन इज टेकन फ्रॉम मूवी जिसमें अलका याग्निक ने ये गाना गाया और अलका याग्निक हो गई अमर, लेजेंड, क्लासिक, जो भी आप कह लीजिए. दिस इज अ कल्ट सॉन्ग जिसको ना मेरे ख्याल हम भूले हैं और ना आने वाली जनरेशन भूलेगी, क्योंकि इसका नया वर्जन भी बना. ऑल्दो इट वाज रियली बैड, बट आई एम प्लेइंग द वेरी ओरिजिनल अलका याग्निक्स. एक दो तीन.

0: जावेद अख्तर के लिखे हुए लिरिक्स, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज, सब कुछ मिलके बना फिल्म फेयर अवार्ड जो अलका याग्निक ने इस गाने के लिए जीता। अच्छा जी, अब आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे। गिव अवे आया है नियॉन कैक्टस की तरफ से। दिस इज एंड वी आर गोइंग टू डू आर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण। और सबसे पहले आपको बताएं, नियॉन कैक्टस इज अ प्लेस वेयर मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं जी इनके पास। अगर आपकी कोई फूड ऑप्शंस हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ज़बीहा हलाल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस इज आल्सो अवेलेबल। और सबसे बेहतरीन बात कि द फ्लेवर्स आर एब्सोल्युटली बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, और साथ ही साथ द वाइब्स आर यंग एंड कलरफुल एंड मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी। तो जरूर विजिट कीजिए नियॉन कैक्टस को। इट्स अ परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट, डेट नाइट हो या यू वॉन्ट मेक सम जस्ट यू नो अ चिल प्लान जैसे हम बनाते हैं ना वैसे, तो नियॉन कैक्टस इज द प्लेस फॉर यू। और साथ ही साथ दे हैव क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, हैप्पी आवर होता है मंडे थ्रू फ्राइडे, और हर रोज उनकी कोई ना कोई डील जरूर चलती रहती है। सो चेक आउट नियॉन कैक्टस, दिस इज NEON नियॉन कैक्टस। और ये आपके लिए $20 का गिव अवे है, गिफ्ट कार्ड एक्चुअली फॉर डाइन इन ओनली। अगर आप जीते तो आपको मिल जाएगा ये गिफ्ट कार्ड। अच्छा, हम आज बात करते हैं, 90s की बात हो रही है, कुछ 90s के कमाल के सिंगर्स की बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि 90s के दौर में तीन सिंगर्स के मैं आपको नाम बताती हूँ, कुमार सानू, साथ ही साथ उदित नारायण जी और साथ ही साथ अभिजीत भट्टाचार्य। ये तीन बहुत प्रोमिनेंट सिंगर्स थे 90s के। आपको इन तीनों में से किसकी गायकी लगती है सबसे ज्यादा खूबसूरत, और कोई अपनी पसंद का गाना भी मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर वेयर यू कैन कॉल एंड टेल मी कि 90s के दौर के कुमार सानू, उदित नारायण या फिर अभिजीत भट्टाचार्य के दरमियान आपको कौन से सिंगर की आवाज या गाने ज्यादा भाया करते थे या दिल को टच किया करते थे। तो फोन कॉल्स करते रहिए, और मैं सबसे पहले तो आपका नाम नोट करने के लिए मुझे पेपर चाहिए होता है क्योंकि आप उनका ओके, लेट्स सी, पानीज रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
1: हाय, माय नेम इज आशीष।
0: जी आशीष, बताइए।
1: एक्चुअली आई लाइक उदित नारायण सॉन्ग, मतलब उनके जो स्पेसिफिकली जो पापा कहते सॉन्ग जो था ना, आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट that particular song, and apart from that I am more of a slow music person, so iske wajah se I like his song and melodies.
0: Okay, lovely. To aapka pasandida gana hua papa kehte hain, do you want to sing a line for us ya nahi, rehne hi de, aap bataiye.
1: I am very bad singer.
0: Chaliye koi baat nahi, no problem. Thank you Ashish, sunte rahiye. I'm going to announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you are live on air, apna naam bataiye.
2: Hello,
0: hi, what's your name?
2: माय नेम इज बालाजी।
0: जी बालाजी बताइए।
2: मेरा भी मतलब फेवरेट है उदित सर, और उनका जो पहला नशा है वो बहुत बार सुना है मैंने, आई लाइक दैट मोस्ट।
0: I love that song. My favorite is Pehla Nasha as well. Thank you so much, Balaji. Please sunte rahiye. I am going to announce the winner in a bit. All right, जी देखिए, हर सबकी अपनी अपनी choices हैं। अगर आपको उदित नारायण के सिवा कोई और पसंद था 90s में तो मुझे बता दीजिए 9722355555. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name? बताइए अपना नाम। जी नाम बताइए अपना जल्दी से।
3: जी जी, मेरा नाम है सईदा।
0: जी बताइए।
3: मुझे वो गाना बहुत पसंद है सोनू निगम का, मैं अगर कहूँ।
0: ओ जी,
3: मैं अगर कहूँ,
0: बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, मैं अगर कहूँ इज सोनू निगम आपके फेवरेट हैं। थैंक यू सईदा जी, सुनते रहिए, मैं अभी अनाउंस करती हूँ। और जी, मैं अगर कहूँ तो 2000 के बाद का गाना था, हम 2090s के इस वक्त दौर की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम एक गाना प्ले करते हैं, आपकी फोन कॉल्स आती रही तो मैं लेती रहूंगी और फिर उसके बाद विनर अनाउंस करूंगी। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

ऑलराइट, हमारी विनर्स, बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही हैं जी. अब विनर का टाइम अनाउंस करने का वक्त आ गया है. कामिनी, यू आर द विनर फॉर दिस नियॉन कैक्टसेस $20 गिफ्ट कार्ड, डाइन इन ओनली. कांग्रेचुलेशंस, दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 गिफ्ट कार्ड, डाइन इन ओनली. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का, रियली रियली अप्रिशिएट इट.

0: एंड विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. वो 90s का बॉलीवुड एक घंटा और अभी मैं आपके साथ हूँ 5 बजे तक. ये खूबसूरत गाने और इनका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो 972-235-5555 पे कॉल करके रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. वी हैव वन मोर आवर ऑफ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Aaja meri gaadi mein baith ja.
9: Baith jao, pakka. Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
10: Wo thoda overheating tha.
9: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो.
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
14: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
15: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
14: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi khareedne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
14: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
19: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
14: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
24: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
0: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
25: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
25: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
25: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
26: कितने आदमी थे?
27: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

1990s की एक और मोस्ट पॉपुलर वॉइस हरी हरन साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना चिकन फ्रॉम द मूवी रंगीला, और आवाज़ उनके साथ मिलाई इस गाने में स्वर्ण लता ने। तो जी 90s, वो 90s के बॉलीवुड में कुछ 90s के आउटस्टैंडिंग सिंगर्स का जिक्र हो रहा है और उन्हीं के गाए हुए कुछ गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ। अगला गाना जो आपके लिए प्ले करूँगी, ये 90s की वो सिंगर हैं जिनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वॉइस शी हैज एंड कविता कृष्णमूर्ति को डेफिनेटली 90s की क्वीन ऑफ मेलेडी कहा जा सकता है। वो कहते हैं ना, क्वीन से ज्यादा मैं समझती हूँ कि नाइटिंगेल, वो जो कोयल जैसी बोली है ना, वो वाकई कविता कृष्णमूर्ति की थी। तो जी उनका एक गाना आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली केयर कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और अब उनका ब्रांड बढ़ रहा है। दे हैव अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, और क्या है, दिस इज लिनोक्सी मेडिकल, LUNOXY, लिनोक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लिनोक्सी मेडिकल आपके लिए लेके आते हैं जी प्राइमरी केयर, और प्राइमरी केयर के साथ बहुत सारी सर्विसेज, जैसे कि आपको बताएं जी अर्जेंट केयर, इसी के साथ इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन, और साथ ही साथ कार्डियक डायग्नोस्टिक्स। और अगर यहाँ बात खत्म

ना हुई, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी आपको लिनॉक्सी मेडिकल में प्रोवाइड की जाएंगी। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। ये नहीं है कि आपको सीटी स्कैन के लिए कहीं और जाना है, एक्सरेज के लिए कहीं और जाना है, जैसे कि पहले हुआ करता था। और अब जो है सब कुछ लिनॉक्सी मेडिकल में अंडर वन रूफ आपको मिलेगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, दे आर ओपन 7 days अ वीक, 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द इवनिंग खुले रहते हैं, और आप वॉक इन कर सकते हैं एनी टाइम बिकॉज कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल, लेट मी स्पेल इट फॉर यू वन मोर टाइम, अगर आप सर्च करना चाहें LUNOXY, लिनॉक्सी मेडिकल।

और अगर आपको भी वो वाली फीलिंग चाहिए कि आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, तो आपको जाना है प्रभु देवा के कॉन्सर्ट में. एंड डेफिनेटली वही वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि एक पूरा पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट आपके लिए आ रहा है. एन अल्टीमेट डांस कॉन्सर्ट जो प्रभु देवा के साथ लाइव होंगे लॉरेन गॉटलिब, साथ ही साथ सोनल बहादुरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हारिनी, नताशा और सानवी मेघना. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि डांस का, परफॉर्मेंस का और परफेक्शन का क्या आलम होगा इस कॉन्सर्ट में. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया प्रभु देवा लाइव इन कॉन्सर्ट इन DFW विद हिज ब्रिलियंट टीम एंड द को स्टार्स जो कि सारे हमें नजर आएंगे. दिस इज हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट द 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर लोकेटेड इन ग्रैंड प्रेरी. अगर आपने अब तक अपने टिकट्स नहीं खरीदे तो ये नंबर नोट कर लीजिए. गिव देम अ कॉल टू बाय सिंगल टिकट, ग्रुप टिकट्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं. दैट इज 248-233-3828 248-233-3828 उनका नंबर. फानेजिया नेटवर्क इज देयर प्राउड मीडिया पार्टनर. और फानेजिया की जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहां पे पिन हुई हुई है पोस्ट जी उनकी. हमारी सोशल मीडिया पेजेस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारी पिन पोस्ट चेकआउट कीजिए टू बुक योर टिकट्स इजिली टू दिस प्रभु देवा लाइव इन DFW कॉन्सर्ट. और ये जो अगला गाना आपके लिए प्ले हो रहा है ये एक और सिंगर जो कि काम तो खैर 1980s से कर रही थी, 70s से एक्चुअली, लेकिन 90s में भी इन्होंने कुछ बड़े ही कमाल के गाने दिए. अनुराधा पौडवाल इनका नाम. और इस गाने की तो वो खास बात करती हैं क्योंकि दिस सॉन्ग वॉज वन ऑफ इज कंसिडर्ड वन ऑफ हर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन माधुरी दीक्षित.

फिल्म बेटा से सुन रहे थे आप ये गाना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। बेटा फिल्म ने माधुरी दीक्षित को दिलाया था फिल्म फेयर अवार्ड और इस गाने ने भी दिलाया था अनुराधा पौडवाल को फिल्म फेयर अवार्ड। तो जी ये हुई आपके लिए बात और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अगर आप टेक्सस बिजनेस ओनर हैं और ढूंढ रहे हैं फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज हेयर टू हेल्प यू। दे आर प्राउडली सर्विंग द टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002। कंपेरेटिव रेट्स हैं उनके पास, रिलायबल सर्विस है और बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी नीड्स के अराउंड कस्टमाइज कर देते हैं एनर्जी प्लान। तो आपकी जो भी नीड्स हैं उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। दैट नंबर इज 844-428-2808 is that number, या फिर आप विजिट कर सकते हैं taraenergy.com। Once again, that website is taraenergy.com। और इसी के साथ ये अगले गाने के को प्ले करते हैं और लेके जाती हूँ आपको ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आकर अभी आधा घंटा और मेरा और आपका एक साथ मौजूद है, बने रहिए। बिकॉज आफ्टर द ब्रेक आई हैव फॉर यू करेंसी अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, वेदर अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, सो मच दैट इज लाइंड अप फॉर यू। और म्यूजिक का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: It's Hoko.
4: अरे बस भी करो यार.
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज. इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, कॉन्टैक्ट द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स कैन हेल्प यू अटेन परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू द EB5 इन्वेस्टर प्रोग्राम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, प्लीज कॉल 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi. Namumkin.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
4: तारीख पर तारीख
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
6: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
11: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
10: नहीं
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है
10: नहीं
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
10: वो भी नहीं
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy.
13: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
16: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
17: Tracks that put you on the right track.
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. मैं हूँ किरण आपके साथ. 5 बजे तक यहाँ मौजूद रहूंगी मंडे थ्रू फ्राइडे. मेरा और आपका साथ 2:30 बजे से 5 बजे तक रहता है. एंड इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी एक्चुअली द वेदर अपडेट से हम शुरू करते हैं जी. तो वेदर की क्या सिचुएशन है आज थर्सडे जुलाई 23rd 4:41 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 94 degrees एंड इट फील्स लाइक 104. तो एटलीस्ट मच बेटर देन यस्टरडे. सो दिन रहा सनी विद हाईज इन दी अपर 90s जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर. ह्यूमिड होगा विद लोज इन दी अपर 70s. पोलन काउंट आज का 4.6 है विच इज लो मीडियम. ग्रास इज द थिंग दैट इज बॉदरिंग वेयर पोलन इज कंसर्न. यूवी इंडेक्स इज एक्सट्रीमली हाई अगेन 11. तो आप अपनी प्लीज सनस्क्रीन हैंडी रखिए. कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सनराइज आज का हुआ 6:33 AM पे जबकि आज का सनसेट होगा 8:32 PM. दिस वॉज योर वेदर फोरकास्ट. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको दूंगी ट्रैफिक एज वेल एज करेंसी एंड गोल्ड प्राइस. स्टे ट्यून्ड.

और ये ट्रैफिक आवर, रश आवर कंसिडर किया जाता है जी, अगर आप रोड्स पे हैं तो आपके साथ ये शेयर करें कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स किसी भी वक्त हो सकते हैं. एक सेकेंड लगता है किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के होने में, जैसे कि कार क्रैश या फिर ट्रक एक्सीडेंट या फिर स्लिप या फिर फॉल इंसिडेंट. तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस, द लीगैलिटीज, द इंटीग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इसकी अंदर कितनी लेयर्स हैं और उस हर लेयर में क्या चल रहा है. एंड वी नीड यू नो एन अटर्नी बाय आर साइड. तो वो अटर्नी है अटर्नी उमर ख्वाजा. आप सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने यू नो इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग का और फिजिकल हेल्थ का, जबकि लेट अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम do the rest for you. They will fight your case. They will help you get the best compensation that you deserve. Aur jo sabse behtareen baat hai wo ye ki you don't have to pay anything until and unless you win the case. So it is a win-win situation for you. Is pareshani ke situation mein agar aap hain, koi aapka pyara hai, to sabse badi rahat ki khabar ye hai ki attorney Umar Khwaja and his team will get you the best compensation and you won't be charged anything until you win. So free consultation ke liye aap attorney Umar Khwaja ko call kar sakte hain. That number is 469-300-5046 is that number. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, which is attorneyomar.com. और अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो I will give you the traffic update brought to you by the law offices of Umar Khwaja.

नेहा कक्कड़ की आवाज में फनी खान से सुन रहे थे आप ये गाना. स्पेशली दिस सॉन्ग वॉज गोइंग आउट टू सफी. सफी, थैंक यू ऑलवेज फॉर लिसनिंग एंड आर वंडरफुल लिसनर. अच्छा जी, इसी के साथ अब टाइम हो गया है आपको करेंसी अपडेट देने का. थर्सडे जुलाई 23rd 4:54 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है. यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87 जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे ट्रेड कर रहा है. इंडियन रुपी 96.87 पे स्टैंड कर रहा है जबकि कैनेडियन डॉलर 1.40. पाकिस्तानी रुपी 277.82 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर जबकि नेपालीज रुपी 155.06 पे स्टैंड कर रहा है. बांग्लादेशी टका 123.53 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग for 1 US dollar.

And with that, it is time to give you the gold price update before I say my bias to you for this evening. Aaj kya hai ji gold price? According to goldprice.com, yahan pe gold price per ounce aaj rahi $4,049.72. Jabki 1 gram sone ki keemat right now is $130.20. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $3.11 की कमी हुई, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $96.72 की कमी देखने को मिली. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. ले रही हूँ अब आपसे विदा, मिलूंगी कल एक बार फिर, सेम टाइम सेम प्लेस, 2:30 PM एंड 2:30 टिल 5 आई विल बी हियर एट 104.9 FM फन एंजल रेडियो. एंड बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए, कल है फ्राइडे, दैट इज किड्स जंक्शन, 3 PM टिल 4:30. और हमारे साथ स्टूडियो में एक और बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से समर ब्रेक आरजे मौजूद होंगे, तो stay tuned and stay connected. Lots of fun is always lined up for you at Fun Asia Radio. Have a lovely evening.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your evening drive time show, jiska naam hai the one, the only, the Bindaas show on Fun Asia Radio, bringing the community together. It is 5:11 in the studio clock, 5:11 minute. Today is a lovely Thursday evening, which is July 23rd. And that means इस हफ्ते का ये मेरा आखिरी शो है जी. मंडे को फिर से वापस आता हूँ, बिकॉज मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM आई गिव यू कंपनी. लेट मी टेल यू कि इस स्टेशन पे आपकी कॉल्स ऑलवेज वेलकम है, स्पेशली इफ यू हैव अ बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी खुशी की बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन आई'd लव टू सेलिब्रेट दैट विद यू. एंड ऑफकोर्स नए गानों की अगर रिक्वेस्ट करेंगे, देन आई'ल मेक श्योर दैट यू गेट दोज स्क्वीज्ड इन एज वेल. ऊपर वाले का धन्यवाद जिसने दिया जी एक और दिन, एक और मौका फॉर मी टू बी हियर, शेयर सम ऑफ माय हार्ट स्टोरीज एंड लिसन टू सम ऑफ योर्स. अगर आज गम सता रहा है तो भी मैं आपके साथ हूँ, खुशी में हो तो भी मैं आपके साथ हूँ. और इस अगले गाने के बाद पूछूंगा आपसे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मूड आर यू एक्चुअली इन. खैर उससे पहले लेट मी टेक यू दिस लवली ट्रैक ओनली ऑन फन एशिया.

That was a lovely track in the voice of Arijit Singh and, of course, Ed Sheeran. Good evening to you, Fanesia. Who is this? चले गए यार, ऐसा गुस्सा क्यों करते हैं? हम तो आपसे बात करने के लिए उतावले थे, पर कोई बात नहीं. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा. ऑल्दो आई एंड माय टीम नेवर विशेस दैट यू आर इन्वॉल्वड इन एन एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, बट अगर आपका बाय चांस कहीं कोई, वो कहते हैं ना गधा है, बिल्कुल चलानी जाती गाड़ी उसको, अगर ऐसी किसी गधे ने गाड़ी ठोक दी तो आपको एक नाम याद रखना है बस, अटर्नी ओमर ख्वाजा. और आपको इसको गूगल में टाइप करना है अटर्नी ओमर, और ऑन द वेबसाइट attorneyomar.com ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर. आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो टेक ओवर कर लेंगे. योर स्ट्रेस विल बी गॉन बिकॉज दे मेक श्योर दैट दे फाइट फॉर यू विद ऑल द यू नो इंश्योरेंस कंपनीज, एनीबडी एल्स दैट इज गोना बी इन दैट प्रोसेस. सो नाम अटर्नी ओमर, द वेबसाइट attorneyomar.com.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
5: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी।
5: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
9: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Beta, 95% aaye?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: भैया जी, दुनिया के सारे कांड याद आ जाते हैं जब घर वाले बोलते हैं ना, बात सुनियो, तेरे बारे में ना एक बात पता चली है।
1: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये
0: म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर एंड लिरिसिस्ट, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया, मिस्टर एम एम खीरवानी, राइट इन द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया Radio N Network. If you are wanting to hear him live, tune into Radio Sangam on 104.1 FM. बट बाय गॉड, जब घर पहुंचते थे और मम्मा कहती थी ना, बात सुनिए जरा, बड़े सीरियस गंभीर मोड में, तेरे बारे में एक बात पता चली है, बाय गॉड ऐसा लगता था, मतलब रिवाइंड होती है ना रील दिमाग में, सारे कांड, कांड वन, कांड टू, कांड थ्री, कांड फोर, क्या पता लगा, बाई गॉड, वो जो दिल की धड़कन उस टाइम रुकती थी ना, कहते हैं ना कि दिल मेरा मतलब हार्ट स्टॉप हो गया एक मिनट के लिए, वैसा फीलिंग आई होगी आप सबको भी। फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दैट लाइक टू शॉप इन इंडिया, इंडिया जाते हैं तो ताजी सब्जियां लेने का कुछ मजा अलग होता है, चारों तरफ से आवाज आ रही होती है, बिंडो ले लो, आलू ले लो, गोभी लो, बैंगन लो, आलू लो, गोभी लो, बैंगन लो, प्याज लो, टमाटर लो, भाई गोभी 10 रुपए, भिंडी 5 रुपए, इसका मजा कुछ और है। अच्छा, अब आप जा ही रहे हैं अगर इस जगह कुछ लेने, तो एक सजेशन देता हूँ, जब भी सब्जी लो ना तो एक ही दुकान से कभी नहीं लेना, ठीक है, अलग अलग दुकान से लेना है, उससे क्या होता है धनिया ज्यादा मिलता है,

0: खोया खोया चांद और खोए खोए से हम लोग रहते हैं जब हमने शुरू करना होता है नया बिजनेस या हमारे बिजनेस को ग्रोथ चाहिए होती है, पर हम ये सोचते हैं, खोए जाते हैं अपने ख्यालों में कि यार ये ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, हाउ विल आई डू दिस, हाउ विल आई डू दैट। तो आपकी टेंशन दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं जी शाहिद पंजवानी साहब, हु इज विद द SBA लोन एक्सपर्ट्स एंड दे आर द वंस हु एक्सपर्ट हैं जी इसी फील्ड में जिसको बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ लोन्स। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन दे कैन प्रेजेंट टू यू। लेट मी वेलकम द जेंटलमैन हियर ऑन फाइनेशिया। गुड इवनिंग शाहिद भाई, हाउ आर यू?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: Thank you, Shahid Saab. ये बताइए कि you know a lot of people want to know, especially the new age हमारे जो millennials हैं, ये जानना चाहते हैं कि new business starters या buyers क्या करना चाहिए, कि नया business start करना चाहिए या existing business को ले लेना चाहिए?
1: भाई, either way is fine. अगर अब loan के नजरिए से मुझे पूछो कि किस business के लिए loan लेना थोड़ा सा process wise easy है, तो वो है एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो अगर आप किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो, देन देयर इज कैश फ्लो एंड व्हाट लेंडर इज लुकिंग। अगर आपको लोन चाहिए और आप ऑलरेडी इनकम जनरेट हो रही है बिजनेस में, मेक्स इट लिटिल बिट इजियर टू डू द लोन फॉर व्हाट इज ऑलरेडी जनरेटिंग कैश फ्लो। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, चाहे फ्रेंचाइज है या चाहे इंडिपेंडेंट है, देन एवरीथिंग विल रिलाय on the projections and everything will rely on your existing income. आप आपका existing कोई business है या आप job कर रहे हो और वहां से क्या income आ रही है, तो फिर जो नया startup है उसकी loan की payment कहाँ से होगी, क्योंकि वो तो startup है, अभी तो business में revenue शुरू नहीं हुआ है। Then it all depends on your credit and your income. Generally speaking, as I said, अगर चलता हुआ business लो तो चाहे रेंटल प्रॉपर्टी है, ऑपरेशनल बिजनेस है, वहां लोन ज्यादा इजी हो जाता है। वी हैव SBA ऑप्शन के जहां कम से कम डाउन पेमेंट एज लो एज 8-10% डाउन पेमेंट में काम हो सकता है। कन्वेंशनल लोन ऑप्शन है जहां अगर कोई SBA के लिए क्वालिफाई नहीं होता है तो 15-20% डाउन पेमेंट चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो काफी लोग आजकल यूज कर रहे हैं वो है दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स SBA, दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स कन्वेंशनल। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टैपिंग इन टू देयर ओन प्रॉपर्टीज इक्विटी। आपका घर है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर उसमें इक्विटी है, वी कैन हेल्प यू गेट अ लोन आउट ऑफ दैट एंड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस।
0: वंडरफुल शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं उनको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। नाउ बिफोर यू गो, न्यू प्रोग्राम्स कुछ आपके पास हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं बिफोर आई लेट यू गो?
1: आई कैन से जो हमने इक्विटी की भी बात की, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोग्राम, बट लेटली वी हैव बीन डूइंग अ लॉट सिंस SBA चेंज द रूल्स के अब सिर्फ सिटीजन को ही SBA मिलता है और एवरीबडी एल्स इज इन एलिजिबल। सो पीपल हैव स्टार्टेड टैपिंग इनटू देयर इक्विटी, बिकॉज इफ यू ओन रियल एस्टेट देन इट डजंट मैटर वेदर इफ यू आर ग्रीन कार्ड, H1, बिजनेस वीजा और सिटीजन, यू ओन द प्रॉपर्टी, यू हैव इक्विटी, यू कैन गेट कैश आउट ऑफ दैट।
0: All right, wonderful. That was Mr. Shahid Panjwani. Give him a call, 817-786-3338 for all of your loan needs. For now, it is Prabhu Deva coming to town August 1st. I'll tell you more. Pehle sunte hain ye gana.

Mathangni Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson Prabhudeva live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhaduria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa, and Sanve Magana for the ultimate pan-India dance concert. You do not want to miss this one, man. August 1st, Saturday, Goya event at the Texas Trust CU Theater in Grand Prairie. Book your tickets now. Give them a call at 248-233-3828. That's 248-233-3828. Media partner is Fun Asia Radio, and you can get to Fun Asia Network's social media pages to book tickets easily on pinned posts. So just go to Fun Asia's digital social media pages on Instagram and on Facebook. You'll get the links to get the tickets right there and then. Let's take you to one more track. और उसके साथ साथ आज आपका हालचाल पूछने का दिल कर रहा है यार. मतलब how are you feeling? आप में से आज कौन happy है? ध्यान से सुनना. Happy, sad, angry, bored या I don't know. हाँ जी, हैप्पी, सैड, एंग्री, बोर्ड और यू डोंट नो. बताओ मुझे क्या चल रहा है मन के अंदर. आप बता सकते हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, बोर्ड या आई डोंट नो. लेट्स सी व्हाट योर सिचुएशन इज.

0: मुस्कुराओ या नहीं आपके मूड पर डिपेंड करता है टुडे। गुड इवनिंग फन एशिया, कौन बोल रहे हैं जी?
1: हाय, दिस इज मरिया।
0: हाय मरिया, मरिया मरिया डुडुडू, कैसे हो मरिया?
1: बिल्कुल ठीक, अभी ठीक हूँ आपसे बात करके, बट वेरी एंग्री।
0: ओह या, अब मेरे को नहीं पता था कि मेरे पास टेलीपैथिक वैद वाली एबिलिटीज हैं। आई कैन जस्ट टॉक टू समबडी एंड मेक देम फील बेटर, बट इट फील्स गुड टू नो दैट।
1: या
0: So, Maria, what was happening with you? क्या मतलब आज sad है, मन थोड़ा down है?
1: नहीं, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है because it's so hot. Out for a walk, I want to play pickleball, but somehow you know I'm unable to do that.
0: You went to play pickleball, but you thought I might convert into a pickle, so मैं ही घर जाती हूँ. Very good, good situation, good thought. But let me make your mood light with some lovely tracks that are coming up, Maria. I hope that sure. your evening goes well from now on. अब के बाद का जो time है ना वो हम अच्छे से enjoy करेंगे. All right, Maria, thank you very much for your call. क्या चल रहा है आपके मन में यार? मेरे को तो आज ये खुशी बहुत है. I'm always a happy guy, and I think part of the reason is that I love my life. I think you know a lot of people didn't get to see the sunrise today, and when I saw that in the morning, the first thing I said, thank you Lord Almighty for yet another morning. And you know, when you start your day off with gratitude, things automatically turn towards the better. And har baar yahi kehta hu ki super wale ka dhanyawad karna bada zaruri hai. It's always good to thank him, and regardless of the ups and downs in life, it's all up to you how you handle your situations and how you think about them, because the brain is the biggest power, right? Agar hum ye bolenge ki bhai hamare liye sab kuch theek hai, then everything will be all right. But agar hum ye sochenge nahi aur sab kuch kharab hai, to fir sab kuch down the hill hi jata hai bhaiya. Break pe jane lage hain, par usse pehle aapko to ye bhi baat shukar karna chahiye ki phalon mein shaadiyan nahi hoti. There are no marriages in fruits. नहीं तो लंगड़े आम के लिए लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है यार. तो नेचर में सब चीजें अच्छी हैं. आता हूँ वापस.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
11: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: Now sir, or price?
11: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: Main heroine hoon. One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: Documents ya parcel bhejni hai?
18: हाँ.
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ.
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ.
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
20: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

0: वालों को मिलता। एक्टिविस्ट एंड स्टूडेंट्स कंटिन्यू अ मैसिव राउंड द क्लॉक सिट इन प्रोटेस्ट एट द जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली। द सिचुएशन रिमेन्स हाईली वोलेटाइल एंड आई हैव बीन सीइंग द वीडियोस। द होल ऑफ द इंटरनेट इज फिल्ड विद रील्स एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इट रियली हर्ट्स माई हार्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। आई मीन हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भोले भाले स्टूडेंट्स, एंड यू कैन सी द वीडियोज यार। एक वीडियो में तो नोएडा की ये भी दिखाया है कि शांति से लोग, मतलब प्रोटेस्ट इज खत्म, लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग विद हर मदर और समबडी ऑन द साइड ऑफ द रोड, द कॉप जस्ट कम्स एंड स्टार्ट्स टू बैश हर एंड यू नो थप्पड़ चल रहे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू डू आर पार्ट, एटलीस्ट शेयर द वीडियोज, एटलीस्ट स्प्रेड द वर्ड, एटलीस्ट से समथिंग अबाउट दिस BS that is happening in India with this whole situation. But I think one shook fast finally end hua ji late on Thursday, and he broke his hunger strike, which is a great sign. But all in all, I think our India needs prayers, our India needs dialogue, and our government needs to just understand the situation. Look man, this is the youth, and if you touch the youth, if you boil them up, they're only going to fight back stronger. Anyway, if you are wanting to fight your credit situation, you want to get your credit mended, aap is ladai ko lad lad ke akele thak chuke hain ki yaar main credit card ka payment bhi karta hu phir bhi mera credit score अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा लोन ही कम नहीं हो रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड का डेट ही नहीं जा रहा है, तो भैया क्योंकि आप उसको सही लोगों के साथ अगर जुड़े ना, जैसे कि अब कॉकरोच पार्टी आई, कुछ ना कुछ अच्छाई उनमें है, उनकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। द मोमेंट यू गेट विद उरा डेट, आपकी सिचुएशन चेंज होगी। बट आई एम नॉट गोना डू द टॉकिंग, लेट मी ब्रिंग अमन हु इज विद उरा। गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: ऑल गुड फनिश। सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। और रंग दे बसंती चोला, दैट्स रियली गुड सॉन्ग। वेल, आपको एक बार फिर से याद करा दूं, महीना खत्म हो रहा है लेकिन अगला महीना शुरू हो रहा है, और इस अगले शुरू होते महीने में आप एक काम जो गलती इस महीने की है या पिछले महीने की है कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरी है, उसको भरने से पहले, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देना अच्छी बात है लेकिन क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरने से पहले अगर आप उरा को कॉल कर लें तो उरा आपके इन क्रेडिट कार्ड्स का आज कर्जा माफ करवा देगा। जी हाँ, कार्ड कोई भी हो, पर्सनल हो, बिजनेस हो, स्टोर के हो, इन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बन जाएगी, उसके आधा कर्जा माफ हो जाएगा। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, आपके गाड़ी का लोन जो रिपोजेस हो गई है, गाड़ी जो टोटल हो गई है, इन सारे लोन्स की एक किस्त बनाकर उसका आधा माफ और आधे की इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त किस्तें, ताकि आपका डेट खत्म हो। डेट खत्म होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, आपको हाउसिंग लोन आराम से मिल जाएगा। सो नोट कीजिए हमारा नंबर 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 9167763555, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org।
2: आए, आए।

0: कमाल है यार, मतलब गाना चलते ही बिल्कुल कॉलर्स की लाइन मेरे पास जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग टू यू फनीजा, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज महबूब।
0: महबूब मेरे, महबूब मेरे। चलो महबूब जी, कैसे हैं? सब ठीक है?
1: सब बढ़िया, सब बढ़िया।
0: महबूब साहब फोर्ट वर्थ में रहते हैं?
1: नियर बाय रहता हूँ।
0: नियर बाय रहते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मालूम है आपको?
1: हिमेश रेशमिया।
0: हिमेश रेशमिया कह रहे हैं महबूब भाई, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। दूसरे नंबर पे कौन है मेरे साथ? इफ यू स्टिल कनेक्टेड, गुड इवनिंग फनीजा, हुज दिस?
2: हाय, गुड इवनिंग, दिस इज आर्या।
0: आर्या भाई कैसे हैं?
2: बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: बस मैं भी बढ़िया हूँ। आर्या भाई, इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ इज एक्सेसिबल फॉर यू?
2: यस यस।
0: ऑलराइट, ग्रेट। डू यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट?
2: इज इट हिमेश रेशमिया?
0: इज इट हिमेश रेशमिया? इज इट कंप्यूटर जी, हिमेश रेशमिया? अच्छा, लॉक कर दिया बड़े भैया। बिल्कुल इट इज हिमेश रेशमिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विल टेक योर डिटेल्स ऑफ द एयर। आज के दिन हुआ है जी जन्म इनका। हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम फनीजा।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
0: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता
3: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
10: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

$50 की शॉपिंग करनी है, इतनी गर्मी है, भाभी काय को घर से बाहर निकलने का, सिर्फ बात इनको कॉल करने का है हिमालयन बाजार को, और $50 से ऊपर की ग्रोसरी विद इन अ 5 mile रेडियस आपको बिल्कुल फ्री पहुंच जाएगी। उसके साथ लॉयल्टी प्रोग्राम है $1.41 spend 5% off after 100 points and Himalayan Bazaar is bringing the taste of home closer to you. Once again located on 360 close to highway 20, this is Himalayan Bazaar. Aur bhuliyega nahi, sham ko taza taza pakode, samosa and chai will be served there daily. Make sure to check them out. Abhi le chalta hu ji aapko agle gaane ki taraf, uske sath sath ye bata dun, this part of our show is brought to you by none other than Vanessa Events. If you're looking to get any of your events done in the city, then these are the people to go to. Chahe aap bahut bada wedding plan kar rahe hain, you're planning a graduation, you're planning a sweet 16, anything and everything is possible with Vanessa Events. Bhabhi ki sari stress, sari tension dur ho jayegi, aur aapko bhi last minute bar bar ye sunne ko nahi milega. Kaha tha na aapse, Vanessa Events ko book kar lo, to pehle hi bata raha hu, Vanessa Events ko hi book karo. Number le lijiye 469-442-8770, that's 469-442-8770. And chahe photography ho, signature events ka decor ho, hospitality ho, ya catering by the renowned Basera Grand, all of this is done with Vanessa Events. Call Hari 469-442-8770. Leke chalta hu aapko agle gaane ki taraf, par usse pehle kya aapko malum hai ki shastron ke anusar na, शास्त्रों के अनुसार उसमें लिखा है कि लड़की में, कुवारी लड़की में 9 देवियां होती हैं. ठीक है जी, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कुवारी लड़की में 9 देवियां होती हैं. अब शादी के बाद कौन सी देवी कब जाग जाए ये पता नहीं लगता ब्रदर.

सर्जरी हुई है, यू लुकिंग फॉर रिहैब दैट इज गोइंग टू बी आफ्टर पोस्ट सर्जरी, जिसको बोलते हैं जी थेरेपी, दे डू इट एक्सेलेंट जॉब. आई हैव पर्सनली यूज देम एंड आई कैन टेल यू दैट द पर्सन हु रन्स दिस फैसिलिटी, उनका नाम ऋषि है. ऋषि इज समबडी हु इज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट हिमसेल्फ एंड द फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क, द क्रिकेट टीम, मेनी अदर क्रिकेटर्स, मेनी अदर अमेरिकन स्पोर्ट्स प्लेयर्स, ही हैज सॉर्टेड देम. इवन यू नो, मुझे इस बात पे कभी मैंने सोचा नहीं था कि एट द ओल्डर एज, यू नो, व्हेन यू पेरेंट्स टर्न 60 एंड अबव, नीज में दर्द होना शुरू होता है. एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ दैट ही हैज क्योर्ड सो मेनी एल्डर पीपल विदाउट मेडिकेशन. डोंट जस्ट गिव दम प्लेन मेडिकेशन, ये लो यार पेन किलर खाओ, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज अवेलेबल एट टेक्सस स्टार रिहैब. और अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है, तो दैट इज अ लिस्ट विच विल डेफिनेटली मेक यू हैप्पी. पहले ये भी बता दूं कि दिस फैसिलिटी मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर इंश्योरेंसेज आर एक्सेप्टेड व्हेन इट कम्स टू योर पोस्ट थेरेपी, पोस्ट सर्जरी थेरेपी. नाउ व्हेन इट कम्स टू द फैसिलिटीज, यू कैन ट्रस्ट देम फॉर पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, जेनरेटिव रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन. द वेबसाइट टू रीच देम इज texasstarrehab.com.

0: दिलजीत दोसांझ पाजी विद दैट ट्रैक जिसका नाम है जी तेरा नी मैं लवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज इंडीड. टुडे आल्सो मार्क्स द बर्थडे ऑफ डैनियल रैडक्लिफ, समबडी हु वाज इन द हैरी पॉटर. And Harry Potter, the name itself was Daniel Radcliffe. July 23rd, 1989, he's 37 years of age today. You know, कहते हैं सब्जियां फल खाने बहुत अच्छे होते हैं. मैं भी अग्री करता हूँ भाई, सब्जियां और फल खाते रहा करो. बट जैसे कई चीज़ें बड़ी टेस्टी भी होती हैं, गोभी का पराठा है, आलू का पराठा है, और उसके बाद आता है मूली का पराठा. देखो आप तो मूली का पराठा खा लेते हो, फिर आप वो कर देते हो जो करना होता है आपको. उनके बारे में सोचा क्या होता है जो पीछे सोचते रह जाते हैं, किसका काम था?
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
8: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
9: Hoko.
10: अरे बस भी करो यार.
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
12: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
12: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
18: listeners, the cost of being uninsured. A single hospitalization, major accident, or liability lawsuit can create significant financial strain. Insurance isn't just about compliance, it's about protecting your family finances, businesses, retirement saving, future income. The right coverage can make all the difference when unexpected event occurs. To get more details, contact me and my team at 972-863-7772, 972-863-7772.

बाथरूम होते हैं ना, जो बाथरूम वो पब्लिक हो, पब्लिक टॉयलेट, ये जो बाथरूम और पब्लिक टॉयलेट होते हैं, ये स्पेशली ना, स्पेशली स्कूल के टॉयलेट, रेलवे स्टेशन, एयरप्लेन्स, ये जो टॉयलेट्स होते हैं ना, ये तो एक तो टॉयलेट की सुविधा तो देते ही हैं, उसके साथ साथ संगीत पेंटिंग की भी प्रतिभाषा को अवसर मिलता है भैया। छह बज के 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं कई बार गया हूँ पहाड़ों में घूमने, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया था, घबराओ मत, और बीवी के साथ भी नहीं गया हूँ, तो मैं लड़कों के साथ गया था, सेफ एंड साउंड है। तो यार आपने माँ बाप के साथ गया था, इशारा समझदार वाले समझ जाएंगे। और मैं वैसे भी रात को अकेले में कहीं जाता नहीं, और स्पेशली ऊंची ऊंची इमारतों पे, बिल्डिंग्स पे मेरे को चढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। पर जब मैं जंगलों, मतलब पहाड़ों में जाता था, जंगलों में जंगल पानी करने नहीं जाता था, पहाड़ों में जंगल होते हैं, वहाँ जाता था, अपनी सोच को साफ करो। अच्छा, तो जब ये जंगलों में जाते थे, वहाँ देखा नहीं आपने पत्थरों पर लिखा हुआ है प्रिया लव्स सो एंड सो, पेड़ में लिखा हुआ है जी, और वो जो लिखा हुआ है ना पत्थरों में, वो इनग्रेव छुरी से होता है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि वो छुरी लेके जाते तो थे, पर ना उन्होंने कोई हरकत करी, ना कोई न्यूज़ में खबर आई, पर ये छुरी लेके जाते क्यों थे, इसका सवाल जनता ढूंढ रही है साहब। आप लोगों से एक सवाल है मेरे को, सवाल ये है कि आई लाइक योर शो, ठीक है जी, आई लाइक योर शो, इसको अपनी अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में आप कैसे बताएंगे? स्टूडियो की लाइनें आपके लिए खुली हैं, 972-235-55-55, आई लाइक योर शो, इसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने डायलेक्ट और अपने अपने एक्सेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ट्रांसलेशन होती है। आई वॉन्ट टू सी इफ यू नो योर लैंग्वेज, यू नो।

0: वो कौन है जो मुझे अपनी भाषा में बताएगा आई लाइक योर शो को किस तरह बोला जाता है। गुड इवनिंग टू यू फन इज़ योर रेडियो। आपका नाम?
1: बीनिश। हाउ आर यू?
0: क्या बोलिए आप आपका नाम?
1: बीनिश।
0: जीनिश। जी
1: या बी फॉर बॉय। बीनिश।
0: बीनिश। बीनिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम बीनिश? फर्स्ट एक्सप्लेन दिस पजल।
1: विजन, नजारा करना।
0: नजारा, वाओ बीनिश, बहुत अच्छा नजारा है हर जगह अगर आपकी आंखें अच्छी हों तो। अब ये बताइए, आई लाइक योर शो को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने डायलॉग में?
1: बड़ा पप्पू शो है तुम्हारा।
0: बड़ा पप्पू शो है तुम्हारा। दिल से बोल रहे हो कि सिर्फ ट्रांसलेट ही कर रहे हो?
1: दिल से बोल रहे हैं, सुबह शाम जब भी गाड़ी चलाते हैं आप ही का शो सुनते हैं।
0: थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी डू वी हैव नेक्स्ट ईयर। गुड इवनिंग फन एशिया। आपका नाम?
2: मेरा नाम शोमा है।
0: हाय शोमा जी, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ।
0: वो आप ठीक हो? आप के जो वो हैं वो भी ठीक है?
2: हाँ सब ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है।
0: अच्छा, ये तारा वो तारा हर तारा सब तारा। अच्छा
2: जी जी, आपनार अनुष्ठान अमर खूब भालो लागे।
0: अरे वाह, बंगाली भालो भालो, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं और लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। जनाब देखो, तरीका होता है अपना अपना ना, थोड़ा इधर उधर खेलने का। फन एशिया रेडियो, हु इज दिस?
3: शीतल काड़े।
0: हाय शीतल जी, कैसी हैं?
3: मस्त।
0: फर्स्ट क्लास?
3: Yes, first class.
0: Very good. Before you tell me what is the translation, पहले ये बताइए, what do you think about what's happening in Delhi? छोटा simple, ज़्यादा emotional मत जाइएगा. Simple, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
3: I don't follow too much, but I definitely don't like what's happening.
0: All right, you don't like what's happening, but I like your show. अब इसको अपने dialect में बोलिए ना.
3: माला तुझा कार्यक्रम खूब आवडतो.
0: खूब आवडतो, गुजराती?
3: मराठी।
0: मराठी मराठी, क्या बात है। थैंक यू मैम, आपका वड़ा पाव और आपकी ये बात जिंदगी भर याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल। लेट्स सी हु वी हैव नेक्स्ट हियर। गुड इवनिंग फन एशिया, रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप, हु इज दिस? रेडियो वॉल्यूम कम कर लो प्लीज, कान का रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो। आंटी कान का पर्दा फट जाएगा तो मेरे को शू करना पड़ेगा, ऐसे मत कीजिए। आ गया, रेडियो वॉल्यूम कम हो गया। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? नहीं कर रही है ये तो, भैया परेशान हो जाते हैं हम, क्या करें, छोटी सी जान। रेडियो का वॉल्यूम कम। गुड इवनिंग फनेशिया, कौन बोल रहे?
4: मिस्टर दिलीप।
0: मिस्टर दिलीप कैसे हैं?
4: बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी अभी कुछ देर पहले आपने दिल्ली में जो चल रहा है उसके लिए पूछा था ना क्वेश्चन किसी को, तो
0: वो तो बाद की बात है। पहले यार जो सवाल है वो तो बताओ कि आई लाइक योर शो को कैसे ट्रांसलेट करोगे अपने डायलेक्ट में?
4: मी
0: गुस्ता तू प्रोग्रामा। अच्छा मेरे मियां, फटाफट दो लाइनों में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन दिल्ली, व्हाट शुड हैपन अकॉर्डिंग टू
4: यू? माय सिस्टर इज आल्सो आईएएस ऑफिसर।
0: अरे भाई, वो नहीं चाहिए।
4: सो मेन प्रॉब्लम इज अ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
0: रिजर्वेशन इज द बिगेस्ट।
4: या ओपन कैटेगरी पीपल डोंट गेट चांस।
0: बिल्कुल ठीक बात है, और इसका मुद्दे का सोल्यूशन ये है कि थिंग्स नीड टू चेंज। आपका पॉइंट ले लिया हमने बड़े भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फन एशिया, कैसी हैं या कैसे हैं?
5: मैं अच्छा हूँ मार्विन भाई।
0: आप अच्छे हो, चलो अच्छे ही रहो यार, वो अच्छा रहने देंगी तो आप बिल्कुल अच्छे रहोगे। क्या नाम है आपका?
5: मैं विक्रम बोल रहा हूँ, विक्रम जांगड़े।
0: विक्रम जांगड़े, मराठी भाई मेरे
5: जी? नहीं, मराठी नहीं है मार्विन भाई, हम छत्तीसगढ़िया।
0: जांगड़े छत्तीसगढ़िया, ओके जांगड़े भैया।
5: यस,
0: अब बताइए कि आई लाइक योर शो छत्तीसगढ़िया में कैसे बोलेंगे भैया?
5: छत्तीसगढ़ी एक्चुअली लैंग्वेज नहीं है, ये एक बोली है, तो उसमें बोलेंगे मोला तो धारावाहिक का बने लागछे।
0: मोना को धारावाहिक भाने लागछे। थैंक यू।
5: अरे नहीं मार्विन भाई, नहीं, मोला तो धारावाहिक का बने लागछे।
0: इस प्रस्तुतकार के धारावाहिक के प्रस्तुतकार हैं ये, बहुत बढ़िया समझ आया भैया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड। आई एम गोना टेक वन मोर कॉलर, देन वी गेटिंग बैक टू द म्यूजिक हियर। गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
6: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग, हु इज दिस?
6: या दिस इज जीत, मैं जीत बोल रहा हूँ।
0: डेट? डेट मेरे को जाना, मुझे जाना डेट के देव।
6: जीत,
0: जीत बोल रहे हो? यारा, ओ यारा मिलना। ओके ओके जीत भैया, आपकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे आई लाइक योर शो सर?
6: मैं तो बंगाली हूँ मगर मैं दूसरा टाइप का आपका बोल सकता हूँ।
0: बिल्कुल दूसरे टाइप का बोलो।
6: आपका प्रोग्राम एकदम झकास है, झकास।
0: थैंक यू वेरी मच सर। और ये झकास बनाते हैं आप लोग, क्योंकि आपके आ जाने से हमारे साथ चार चांद लग जाते हैं जनाब। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कॉलर्स। एक बात बताऊं आपको, आजकल ना गर्मी बहुत पड़ रही है डालस फोर्ट वर्थ में, और इस गर्मी में कहीं अगर आइस हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अब अगर आइस हो जाती तो बुरा भी बहुत होता है। सुनने में आया है कि बर्फ़ कहीं ना कहीं बारिश बर्फ़ हो रही है। अब मेरी लाइंस को आप अंडर द मैसेज पढ़ लीजिए कि आइस गर्मी में होती तो अच्छी होती, बट आइस DFW में कई जगह शायद शंका है, ध्यान रखिएगा भैया। बट दिस वन इज टू यू ऑल, आपके आ जाने से हो जाता है हमारा दिन रोशन। दिस इज फ्रॉम मी एंड द फनेजिया टीम, थैंकिंग यू ऑल लवली लिसनर्स।

0: Alright, we're going to take a short commercial break. और ब्रेक के उस पार में वापस आ रहा हूँ जी फॉर द लास्ट सेगमेंट ऑफ माई शो. पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी के पास तमीज का नंबर है? वो लोग कहते रहते हैं मारून भाई तमीज से बात करो, तो भेज दीजिएगा.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
8: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
12: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
13: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
14: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121. Or Custer Junction.
15: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

अरे यार ये गाना इतना पुराना, मारो इन काय को लगाया, मतलब इतना पुराना भी नहीं, ओके ओके पुराना है, बट आज इसलिए लगाया भी है क्योंकि आज जो इस कास्ट में बंदे थे ना उनका भी बर्थडे होता है। एंड अगर आपको उनका नाम मैं बताता हूँ तो नाम था जी उनका, ये अभी अभी अभी आ जाएगा अपने पास, ठीक है जी। उनका नाम था जनाब या मोहन अगाशे, यू नो मोहन अगाशे, बड़ी हैवी सेट वॉइस थी और इसमें विलन का रोल प्ले किया था। एंड एक्टर, फिर यूनिवर्सिटी टीचर, स्टेज एक्टर एंड फिल्म एक्टर रह चुके हैं। आज के दिन कर रहे हैं जी हम इनको भी याद। मुझे ना ये फिल्म में उनका रोल बड़ा, मतलब आई वॉज यंग वेन दिस मूवी केम आउट एंड आई थिंक जो इम्पैक्ट चाहिए था ना एक विलन से वो इन्होंने ज़रूर दिया था। That is Mohan Agashe and we wish him a very happy birthday. इसके साथ साथ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी द इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे गेम। फाइनली इंडिया ने इज्जत अपनी वापस बचानी शुरू करी है। आज का गेम था जिम्बाब्वे वर्सेज इंडिया। जिम्बाब्वे मेड 125 फॉर 7 इन देयर 20 ओवर्स। इंडिया won that game by 7 wickets, 13.2 overs, 126. And guess what? Suryavanshi came back stronger, man. 50 runs in 19 deliveries. Once again, delivering a smashing killer game right there. 4 boundaries and 4 sixes for this young lad. You know, I'm very happy for him. And I was sad that he got dropped from the One Day Internationals. But I think after this, a couple of T20s, he's going to be back in the Indian squad, and that's what we all need. This part of the show is brought to you by Page 3 Eatery. If you haven't been to Page 3 yet, you haven't had the exact authentic chaat. Bhaiya ji, लखनवी चाट, लखनऊ के लोग अंदाज है भैया उनका, बहुत अच्छा होता है, वही आपको मिलेगा। जाके उनकी पालक पत्ता चाट ट्राई करें या ट्राई करें उनके गलौटी कबाब, मुंह में पानी आ रहा है भैया। साथ साथ आप ट्राई करेंगे नवाब रैनसम बिरयानी या फिर उनका ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल वड़ा पाव, ओए होए होए। टुडे आल्सो मार्क्स द बर्थडे ऑफ वन लेजेंडरी राइटर, पंजाब की आन बान शान, मिस्टर शिव कुमार बटालवी, बॉर्न ऑन द 23rd ऑफ जुलाई 1936, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार इनका वैसे नाम था, बटालवी इसलिए क्योंकि बटाला डिस्ट्रिक्ट के पास, अब तो ब्रिटिश इंडिया है जी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। एंड ही बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1967 में। एंड बहुत सारी राइटिंग, बहुत सारे गाने, उसमें से एक बहुत ही प्यारी राइटिंग है विच इज दिस वन दैट आई एम गोना शेयर। साथ साथ आपको ये बता दूँ, फॉर द वंस लिविंग इन ग्रैंड प्रेरी एंड मैंसफील्ड एरिया, आर्लिंगटन एरिया, यू हैव योर सेल्फ अ ह्यूज ह्यूज डील कम योर वे, एंड दैट इज हिमालयन बाजार। चाहे इंडियन ग्रोसरीज हो, हलाल मीट हो, या हो वाटर बफ फॉर माई नेपलीज फ्रेंड्स, आप जरूर जाइए हिमालयन बाजार। दिस इज लोकेटेड ऑन 360 एंड हाईवे 20, वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड फॉर पीपल इन ग्रैंड प्रेरी एंड ऑफ कोर्स फॉर पीपल इन एंड अराउंड आर्लिंगटन। देयर एड्रेस वंस अगेन इज 5103 मैग्ना खाड़ा बुलेवार्ड, स्वीट 110 इन ग्रैंड प्रेरी। और याद रखिए शाम को गर्मा गर्म पकौड़े समोसे चाय बनती है ऑन साइड। इन रिमेम्बरेंस ऑफ शिव कुमार बटालवी जी, दिस इज फॉर यू ऑल।

टोनी सिंह, टोनी सिंह पजला, टोनी सिंह आगे पुलिस वाले। फॉर नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय आदियोस, बिकॉज आफ्टर मी इज इपी द हिपी। और जो भी शुरू होता है जनाब, उसको खत्म होना जरूरी है। जाते जाते ये कहूंगा कि इस हफ्ते, आज और कल आपका थोड़ा सा जो तवज्जो है जी टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन दैट इंडिया इज सीइंग एट जंतर मंतर, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ राइट स्प्रेड कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। आई थिंक द यूथ डिजर्व्स टू बी हर्ड, द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड वॉट इज हैपनिंग टू डैम इज सर्टनली नॉट अप्रिशिएटेड। विद दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक श्योर टू गिव योर सेल्फ टाइम। कभी कभी वो आपको पता है, कैसेट भी ना जब खत्म हो जाती है उसको रिवाइंड करना पड़ता था। आज भी जब आप किसी चीज़ में बैटरी डालते हैं ना, वो बैटरी खत्म हो जाती है, उसको चार्जिंग करनी पड़ती है। तो अपने आप को क्यों चार्ज करना भूल जाते हो दोस्तों? आपको चार्ज करने के लिए तार नहीं लगेगी, आपको चार्ज करने के लिए लगेगा नेचर, आपको चार्ज करने के लिए लगेगा आपके दोस्त, आपको चार्ज करने के लिए लगेगा अच्छा खाना, व्हाट एवर यू डिजायर। सो मेक श्योर यू चार्ज योरसेल्फ दिस वीकेंड ऑन माय रिक्वेस्ट। फॉर नाउ इट इज बंदा बिंदास, मार बिंदास साइनिंग ऑफ फ्रॉम फन एशिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, आदियोस।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to